FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत 1948 के आश्विन मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 24 सेकंड हुए हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली

FM 103 MHz पर हम आकाश वाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकोडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र

0: मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। अब समय है खेती की बातें कार्यक्रम का, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में कंपोस्ट बनाने की विधि पर जानकारी। आलेखन और वाचक स्वर है सुनीता अग्रवाल का।
2: खेती की बातें कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे कंपोस्ट खाद के लाभ पर। श्रोताओं, कंपोस्ट खाद फसल व पौधे के पोषक तत्वों में उच्च जैविक उर्वरता संचार करता है, जो मिट्टी की भौतिक विशेषताओं में सुधार लाता है, खेत में जैव अवशिष्ट को कम करता है और रोग जनितों को खत्म करता है। इस तरह कंपोस्ट खाद जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपोस्ट के लिए उस स्थान का चयन करें जहां हवा, धूप और पानी का प्रभाव ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संतुलित मात्रा में हो, और मिश्रण या कचरा ना तो ज्यादा गीला होना चाहिए और ना ही सूखा होना चाहिए। खाद बनाने के लिए जगह का चयन जमीन के ऊपर या गड्ढे के रूप में दोनों तरह से किया जा सकता है। अगर जमीन के ऊपर कर रहे हैं तो उस जगह से खरपतवार को साफ कर देना चाहिए और मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर परत बनाएं, उसमें पानी से गीला करके उस पर कचरा डालना चाहिए। इसी तरह से यदि गड्ढे का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ मिट्टी की परत बनाएं और पानी का छिड़काव करें। यदि हो सके तो अधिक नाइट्रोजन के लिए मिश्रण में पौधे व फसल के अवशेषों को ज़्यादा डालें, जिससे नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा मिल सकेगी। मिश्रण को डालते समय ध्यान दें कि उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से दबाकर गड्ढे को भरना चाहिए और ऊपर गोबर का लेप लगा देना चाहिए। इसके बाद उस पर 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बना देना चाहिए। कचरे को नमी युक्त करके गड्ढे में डालना चाहिए और 4 से 5 महीने के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो कंपोस्ट खाद तैयार होता है वो आवश्यक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होता है। कंपोस्ट खाद प्रभावी तब होता है जब में ऐसी परिस्थितियों में बनाया जाता है जो सूक्ष्म जीवों के नाम पर मिट्टी में छोटे छोटे जीवों का विकास का समर्थन करते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। सूक्ष्म जीवों को और पौधे और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। पौधे और पशु के कचरे के टूटने के दौरान गर्मी का उत्पादन होता है और कुछ दिनों के बाद तैयार कंपोस्ट का ढेर गर्म हो जाता है। जब उसे खोला जाता है तो उसमें भाप दिखाई देता है। कचरे की सामग्री के रूप में विघटित होने पर ऐसे पदार्थों में पोषक तत्व कुछ होते हैं जिनका उपयोग फसल और पौधे में किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद को फसल बुआई से उसे 4 सप्ताह पहले भी नमी युक्त खेत में डालना चाहिए और उसको किसी भी यंत्र से मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए ताकि पोषक तत्व भूमि में अच्छी तरीके से प्रगतिशील हो सके। यह फसल के अवशेषों, गोबर, घास और अन्य घरेलू कचरे से बनती है जो किसानों को अपने खेतों से ही मिल जाया करती है। पौधे इसके पोषक तत्वों को अधिक टूटने की बजाय सीधे ग्रहण कर लेते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे फसल के समर्थन मिलता है और पानी की बचत भी होती है। पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना सबों के हित के लिए कार्य है, किसानों के लिए, मानव सेहत के लिए और साथ ही पर्यावरण के लिए। तो फिर किसान भाइयों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। और आज की जानकारी यही।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे थे सुनीता अग्रवाल को, और अब समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस गान का। आइए सुनते हैं कड़ी संख्या 294।
3: एपिसोड नंबर

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

चिंता का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य चिंता को स्वयं ही पैदा करता है। जितनी लोग उतनी चिंताएं। हर इंसान की अपनी चिंताएं हैं, अपने विषय हैं। कोई किसी बात को लेकर चिंतित है तो कई किसी अन्य बातों को लेकर। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। कोई अपने दुखों से दुखी है तो कोई किसी के सुख से दुखी हो जाता है। तभी तो किसी का दुख किसी के लिए सुख है तो किसी का सुख किसी के लिए दुख। चिंता सागर की उस सतह की तरह है जहां पर सदा उथल पुथल मची रहती है। लहरें बनती हैं और बिगड़ती हैं। चिंतन सागर में उस ठहरे तल का नाम है जहां शांति रत्न और खजाने छिपे हुए हैं। चिंता यानी संसार और चिंतन यानी स्वयं। चिंता करने वाला सदैव दूसरों में उलझा रहता है। कमी स्वयं में नहीं दूसरों में ढूंढता है। अपनी असफलता और दुखों का जिम्मेवार भी दूसरों को ठहराता है। सुख के लिए स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को परिवर्तित करने में लगा रहता है। चिंतन में व्यक्ति स्वयं को टटोलता है, अपनी नजरें स्वयं पर टिकाता है, अपनी जांच पड़ताल करता हुआ कमी किसी दूसरे में नहीं बल्कि अपने आप में देखने की कोशिश करता है। चिंता करने वाले की यात्रा सांसारिक है तो चिंतन करने वाले की यात्रा अंतर यात्रा। चिंता श्रृंखलाबद्ध समस्याओं की निरंतरता का नाम है। तभी तो एक समस्या खत्म होती नहीं, उसके साथ अनेक प्रश्न करना उचित हो जाता है। किंतु हर बात पर चिंता करना यह तो बेकार है। प्रसिद्ध विचारक बीचर का भी मानना था कि व्यक्ति काम से नहीं मरता है, चिंता उसे मार डालती है। दरअसल हमें जितना मिलता है हम उससे अधिक और अधिक की आस लगाए रहते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों के पास देखकर ईर्ष्या करते हैं और इसी आशा में घुलते रहते हैं कि हमें कैसे प्राप्त हो जाए सब कुछ, और यह चिंता कई परेशानियों का कारण बन जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यदि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से किसी काम में व्यस्त रखते हैं तो फिर चिंता के लिए फालतू तो समय नहीं होता है और आप चिंता से दूर होते हैं। चिंता कुछ हद तक सही है, समस्याओं का हल खोजा जाना चाहिए, किंतु उसे मनोरोग नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, चिंतन करें चिंता नहीं।

चिंता नहीं चिंतन करें। चिंतन कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे निर्मला तिवारी को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म जय माँ वैष्णो देवी के कुछ गीत।

0: भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम आराधना के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्म जय माँ वैष्णो देवी के कुछ गीत। कलाकार थे सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल से ली गई भेंट वार्ता। बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आंखों पर पड़ता दुष्प्रभाव, भेंट करता है श्री संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों, आज के समय की यदि हम बात करें तो जमाना मोबाइल का है। हर समय हम मोबाइल के सहारे रहते हैं, सर्फिंग करते हैं और ज़्यादातर समय हमारा मोबाइल पर निकलता है। ज़्यादा समय तक यदि हम मोबाइल देखते हैं तो आंखों में बहुत सारी परेशानियां होना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों में, जिन्हें मोबाइल की लत लगी हुई है, वो मोबाइल देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी आंखों की विकृतियां उत्पन्न होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो लगातार स्क्रीन टाइमिंग से क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है और खासकर बच्चों पर हम किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद वर्णवाल। डॉक्टर साहब स्वागत।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, आए दिन हर समय लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, आंखों में जलन, माथे में दर्द और भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
2: देखिए, एक बात तो है कि अभी के समय में बिना मोबाइल का आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके लिए सम्मिलित है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ इसकी जो खामियां हैं वो भी आपके सामने है और हर घर में सभी लोग इससे परेशान हैं। इसका मुख्य कारण है आप आँख को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं, उसके कारण कॉर्निया ड्राई होता है। और मेन कारण कॉर्निया ड्राई होना ही है बाकी आँखों के लक्षण का। तो अगर हम आँख को ड्राई होने से बचा सकते हैं तो फिर मोबाइल कोई हानि की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं बचा पाते हैं और लगातार स्क्रीन टाइम पौन घंटे एक घंटे या उससे अधिक होता है तो उसकी जो भी खामियाँ हैं उसे हम पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शुरू में तो लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धुंधलापन बढ़ने लगता है। अगर हम उसका पावर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं उसका विजन 6x6 नॉर्मल विजन है, लेकिन उसे शिकायत है कि हमें धुंधलापन हो रहा है। इसका अगर आप हिस्ट्री और लेंगे तो दो बातें मिलती हैं। एक तो मिलता है कि वह व्यक्ति या बच्चा मोबाइल का उपयोग अधिक कर रहा है और दूसरा उसका खान पान प्रॉपर नहीं है। ये दोनों खामियां हैं, खान पान प्रॉपर नहीं होना और मोबाइल का देखना, ये दोनों उसकी आँख की परेशानी का मुख्य कारण है। और छोटे बच्चों में तो इसका और अधिक प्रभाव पड़ता है और उसी कारण लगता है माँ बाप को कि आँख पे पावर आ गया है। और हमारी प्रैक्टिस में हम पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते हैं दिखाने के लिए, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहब देखेंगे, चश्मा लिख देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक उसके लिए आवश्यक प्रिकॉशन नहीं लेगा या बच्चे नहीं लेंगे तब तक उन्हें जितना आराम मिलना चाहिए वो नहीं आराम होगा। तब दो तीन बातें हैं। एक तो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्क्रीन। कई बार जैसे बैंकिंग सर्विसेज में

0: ऑफिशियल में आजकल मैक्सिमम लोग सब नेट से ही काम होता है, बैंक मोबाइल और लैपटॉप से ही काम होता है, तो ये प्रैक्टिकल है कि उन्हें काम करना है, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल है कि वो काम अगर लगातार कर रहे हैं बिना प्रिकॉशन लिए तो उनका लाइफ स्कैन, आई का लाइफ स्कैन काफ़ी हद तक कम जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर 45-50 मिनट में वो 2-4-5 मिनट गैप करें, उस गैप में आप स्क्रीन से अपने आप को हटाएं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप देहात में कहते हैं आँख मारना, तो दैट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो दैट मीन्स कि आप गेजिंग या टक एक टक ताकना, उसे आपको अवॉइड करना है। आप कोशिश करिए कि ब्लिंक करते रहिए बीच में, तो कॉर्निया ड्राई नहीं होगा और आपको आँख में पेन नहीं होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चों से हम पूछते हैं कि उसका विजन नॉर्मल है, उसके बाद भी दिख नहीं रहा है, तो अगला क्वेश्चन मुझे ये रहता है कि क्या खा के आए हो, तो उसके गार्जियन का भी हंसता है कि बच्चा भी हंसता है, और नहीं बोल पाता है तो माँ को देखता है क्या खाए हैं, नहीं पता है। तो जब और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, जब उसको ये समझाते हैं कि खाना आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना चश्मा टेस्ट करवाना, तब पाते हैं कि या तो चाय रोटी खा कर आया है, या पास्ता खा कर आया है, या फास्ट फूड खा कर आया है, और ये लगातार खाता रहता है। तो बीच में हमारी सलाह उन लोग की रहती है कि भाई ठीक है तुम सब खाओ, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी फल पसंद है उसको खाओ, जो भी सब्जियाँ पसंद है उसको खाओ, और अगर नहीं पसंद है तो माँ को बोलते हैं कि भैया गाजर टमाटर और इस टाइप का जो भी है उसको पीस के पिला दो बच्चे को, कोई उपाय नहीं है उसका। और कई बार ये नौबत बच्चे तैयार नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं कि अभी बच्चे इतने तेज हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग अगर उनका किया जाए तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन तैयार हो जाते हैं बच्चे, लेकिन काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। आज के समय काउंसलिंग ना डॉक्टर के पास समय है ना माँ बाप के पास समय है, उन्हें भी लगता है कि आसानी से मोबाइल दे दो, बच्चा अपना इंगेज हो गया, अब अपना काम करते रहो। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जो 6 महीना साल 2 साल 3 साल के बाद आपको दिखाई पड़ने लगता है। हमारी अपनी मान्यता है और अनुभव है कि सारे ऑफिशियल्स स्टाफ से काम चाहते हैं, आप अपना काम करते रहिए, अगर 5 मिनट 7 मिनट जो करते हैं ना कहीं कोई पूछने नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है जब आप काम नहीं करते हैं, फाकी मारते हैं। तो दूसरा कि आप अगर ब्रेक करना है और नहीं मिल रहा है, थोड़ा बीच में पानी पी लें, कभी कम टॉयलेट चल जाएं, बाथरूम चल जाएं, एक आध अपने दोस्त से 1 मिनट बात कर लें, इस तरह करके हम टाइम को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पाते हैं कि अभी नए युग में चूँकि सरकारी जॉब बहुत कम है, लेकिन नया जनरेशन जॉब के पीछे पागल है। हम देखते हैं कि 28 साल 30 साल 32 साल हो गया है, लड़कियां लड़के बहुत क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो मोबाइल पे, क्यों अधिकांश घरों में लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं होता है। तब पूछते हैं फिर नेक्स्ट रात को क्या कैसे करती हो, सो के पढ़ती हो, सो के पढ़ते हो, तो हाँ सर। तो उस हालत में उनके लिए सलाह होता है कि तुम कोशिश करो एक टाइम मेंटेन करने का, फिक्स टाइम पे सो, फिक्स टाइम पे उठो, और सो कर नहीं बैठकर मोबाइल देखो बीच में इंटरप्शन। तो इस तरह करें कोशिश करते हैं उन लोग कंसोल करने का, कोशिश समझाने का, अधिकांश केस में रिजल्ट मिलता है। ऐसे मरीज का 2 शिकायत होती है, एक होता है आँख में दर्द और दूसरा होता है माथे में दर्द, और जब हम स्क्रीन टाइम कम करते हैं, चेंज करते हैं, इनकी शिकायत अपने आप ठीक हो जाती है। प्लस कुछ लोग का जेन्युइनली ड्राई आई सिंड्रोम होता है जिसमें उसका आंसू कम बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम बाहर से आंसू जोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल टीयर, और वो हम डालते हैं जिससे कॉर्निया हमारा वेट भींगा हुआ रहे। इस तरह हम मरीज को समझाते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूर करते हैं उसकी।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राय लोग सोने के समय रात में मोबाइल देखते हैं और खासकर अंधेरे में मोबाइल देखते हैं रातों में, ये कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे?
0: ये बहुत नुकसानदेह है। आजकल आप देखोगे कि पेपर में या मीडिया में बीच में हेल्थ संबंधी जो आता है प्रोग्राम, उसमें बताता है कि रात को आप मोबाइल एकदम मत देखो, अंधेरा में देखने की बात ही नहीं है, उसके बदले आप म्यूजिक सुना करो। ये रात को देखने का ही कारण है कि अधिकांश लोग आजकल डिस्निया या एपनिया लॉस ऑफ स्लीप से परेशान है। मैक्सिमम लोग को अच्छी नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आने के कारण नेक्स्ट डे वो फ्रेश नहीं फील करता है, उसको हेडेक होता है, परेशानी होती है। तो तो अगर वो टाइमिंग मेंटेन करे, सोने के पहले मोबाइल नहीं देखे, तो इसका बहुत सारा फ़ायदा उसको होगा। और साथ में सीजनल जो भी साग सब्जी या फल उपलब्ध है उसे वो ज़रूर ले।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग और आँखों पर पड़ते दुष्प्रभाव पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ता करते डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद रांची और भेंटकर्ता श्री संजीव कुमार लाल। और अब समय हो चुका है समाचारों का। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए जोड़ते हैं दिल्ली केंद्र से।

0: दीर्घतमेषु नृत्योत्सवेषु अन्यतमः नवरात्र महोत्सवः अद्य गुजरात राज्ये महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारभते। नवदिनात्मकः अयं महोत्सवः दुर्गा देव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने अनेके श्रद्धालवः गुजरातस्य प्रसिद्धेषु देवी मन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। महोत्सवकाले सुरक्षां सुनिश्चेतुं गुजरात आरक्षिदलेन राज्यस्य 22,000+ गरबास्थलेषु व्यापकाः सुरक्षाव्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंटेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अदीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली। वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। अब ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 54वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल वाराणसी में आज सुबह नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाना है। ये पहल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न संगठनों के साथ कर रहा है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ

का 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर बराबरी पर हैं। शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युवा संगम के 7वें चरण का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। युवा संगम कार्यक्रम तेलंगाना असम आदान प्रदान कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को दर्शाता है, जिसमें युवाओं को देश की विविधता से परिचित होने, अपने गृह राज्यों से परे अन्य समुदाय से जोड़ने और भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से बस कुछ ही पलों के बाद बच्चे सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। 7:30 का समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायन श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से राग ठोमरी खवाज में। सुबह के 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 8:30 रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कुछ फिल्म गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे सुबह के 8:45 पर। सुबह के 9:00 आप सुनेंगे जोहार पलामू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सुमित कुमार मिश्रा की वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य एवं लक्ष्य। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। दिन के 1:00 दिल्ली केंद्र से पुनः आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले होंगे। दिन के 2:00 दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे, 2:15 पर हिंदी में समाचार और 2:30 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

शाम 4 बजे रांची केंद्रों से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 6 बजे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे। शाम 5:30 पर युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम होगा युवाणी। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे ग्रामीण सभा कार्यक्रम। शाम 6:30 पर महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा जननी। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत और आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभ पर चर्चा होगी। साथ ही पूजा गुप्ता की आप वार्ता सुनेंगे बालिका शिक्षा पर। शाम 7 बजे रांची केंद्रों से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे स्वराज जिले कार्यक्रम के तहत आबिदा को। 7:45 पर भरत सिंह भारती और उनके साथियों से आप सुनेंगे लोकगीत। कार्यक्रम होगा बहुआ। कुछ फिल्मी गीतों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम होगा चित्रपट से। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9 बजे अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। रात्रि 9:30 मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। रात्रि 10 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्म गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 10:30 एक ही फनकार कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे एक रंग कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

बाल सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम बच्चों को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। बच्चों, आप पढ़ाई तो सालों भर करते ही हैं, लेकिन अगर आप में नियमित अभ्यास की आदत नहीं है तो आप अभी से यह आदत डाल लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य और आपके समुचित विकास की यह आधारशिला है। यह न केवल आपको पढ़ाई में बेहतर बनाती है, बल्कि आपको जीवन में डिसिप्लिन, धैर्य और दृढ़ संकल्प जैसे महत्वपूर्ण गुण भी सिखाती है। प्रसिद्ध कहावत आपने सुना होगा बच्चों, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसन यावत जाते शिल्पे पड़त निशान। यानी कि निरंतर जो आपका अभ्यास है, जो आपकी प्रैक्टिस है, वह एक मंद बुद्धि व्यक्ति को भी विद्वान बना सकती है। बच्चों में इस आदत को विकसित करना माता पिता और शिक्षकों की साझी जिम्मेदारी है। नियमित रूप से पढ़ाई या किसी कला का अभ्यास करने से बच्चे विषय को रटने के बजाय उसे गहराई से समझने लगते हैं। आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है। जब बच्चे किसी काम को बार बार करते हैं तो उनकी गलतियां कम होने लगती है और इससे आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। समय प्रबंधन यानी कि टाइम का मैनेजमेंट करना भी आप सीख जाते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करने से बच्चे समय की कीमत समझने लगते हैं, जो आगे चलकर बेहद काम आता है। इतना ही नहीं, मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बच्चे रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर अभ्यास करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक मानसिक तनाव भी कम होगा। एक सही दिनचर्या यानी कि रूटीन बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बच्चों के लिए खेल, पढ़ाई और आराम का एक निश्चित समय तय होना चाहिए। शुरुआत में समय कम जैसे कि 20 से 30 मिनट रखना चाहिए और धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए। इसे मज़ेदार और दिलचस्प तरीके से अपनाएं। पढ़ाई या अभ्यास को बोझ न बनने दें। खेल खेल में कहानियों, पहेलियों या चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। शांत और अनुकूल वातावरण होना चाहिए। घर में अभ्यास के लिए कोना तय करें जहां शांति हो और टीवी, मोबाइल या किसी अन्य चीज़ से ध्यान न भटके। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करना चाहिए। बच्चों को एक साथ बहुत सारा काम देने के बजाय छोटे छोटे टास्क दें। लक्ष्य पूरा होने पर उनकी सराहना भी होनी चाहिए। धैर्य रखें और खुद आदर्श बने। अभिभावकों से हमारी गुजारिश होगी कि बच्चे उपदेश से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। यदि माता पिता भी अपना काम सही ढंग से करेंगे, समय पर करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो बच्चे अनजाने में उस आदत को अपना लेते हैं। यानी कि आप जो करते हैं बच्चे उसे फॉलो करते हैं, बच्चे उसे सीखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके भी जो कार्य हैं, आपके जो कर्म हैं, वे अच्छे होने चाहिए। अगर आप सच बोलते हैं, अगर आप समय से उठते हैं, घर के सारे काम नियमित रूप से करते हैं, आप अगर डिसिप्लिन में रहते हैं, आप में अगर धैर्य है, तो बच्चों में नेचुरली यह सारे गुण चले आएंगे। इसके लिए बच्चों को अलग से उपदेश देने की या नसीहत देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। नियमित अभ्यास कोई एक दिन में आने वाला बदलाव नहीं है बच्चों, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शुरुआत में बच्चों को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब आप इसको आदत बना लेंगे तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा और ऐसे में सफलता आपके कदम चूमेगी। एक अभिभावक के रूप में हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम बच्चों को डांटे नहीं, बल्कि प्यार और धैर्य से उन्हें इस राह पर आगे बढ़ाएं और नियमित अभ्यास के जरिए उन्हें सफलता के शिखर तक पहुँचाएँ। बच्चों, आप पढ़ाई करें, मेहनत करें, लेकिन ईश्वर की आराधना को भी अपना समय दें, और नहीं तो कम से कम आप जहाँ कहीं भी हो एक बार भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करें, जो उन्होंने आपको इतना बेहतर जीवन दिया। और अभी शारदीय नवरात्र शुरू हो चुका है, आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आइए आपको सुनवाते ही यह गीत।

के बावजूद उनके मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति वही है जो मन से प्रफुल्लित हो। यह सभी लोगों के लिए लाभकारी है और छात्र छात्राओं में इसका अहम हिस्सा है। विद्यार्थी जीवन में शांति एवं शिष्टाचार एक अनिवार्य अंग है। जीवन का प्रथम भाग विद्या उपार्जन का काल है। विद्या अध्ययन करने का स्वर्ण काल है। भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनने की क्षमता और सामर्थ्य उत्पन्न करने की बेला है। अतः विद्यार्थी को विद्या का शुद्धा शांत करने तथा जीवन निर्वाह योग बनाने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। एक आदर्श विद्यार्थी अपने मन, वचन और कर्म में शांति व एकता स्थापित कर जीवन के सत्य स्वरूप को स्वीकार करता है। विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या प्राप्ति। सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो सदा शिष्ट, सद्भाव एवं शांत होता है। तुलसीदास ने इसी भाव का समर्थन करते हुए कहा है, यथा नवहिम बुद्ध विद्या पावे। वही विद्यार्थी सफल है जो सदा शांत भाव रखे। कटुवाणी मारपीट से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वह व्यक्ति जो हमेशा बुरे कामों में लीन हो, कभी सफलता या दूसरों के लिए सही साबित नहीं होता। एक विद्यार्थी को स्वावलंबी एवं सदाचारी बनना चाहिए। संस्कृत साहित्य में आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। वे हैं काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए कौवे जैसे सतर्कता चाहिए, एकाग्रचित्ता बगुले के समान होनी चाहिए, जरा सी आहट पाकर टूट जाने वाली निद्रा होनी चाहिए, कम भोजन तथा घर से दूर रहना चाहिए। जिस विद्यार्थी का मन साफ और शांत हो, उसे कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। हमें अपने सारे लक्ष्य जिन्हें हम ग्रहण करना चाहते हैं, उससे हमें कभी वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वह कैसी भी परेशानी या दिक्कतें हों। शांतमय जीवन जीने वाले व्यक्ति का निर्माण करना ही शांति शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शांति जीवन में यदि ना हो तो जीवन का अर्थ नहीं बचता। सभी लोग चाहते हैं कि वो खुश और शांति में हो। बुराई से ना कोई अच्छा जीवन यापन कर पाया है और ना ही कर पा सकता है। विद्यार्थी जीवन में शांति होनी अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी विद्यार्थी अच्छी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। शांत, सुशील, यह सब गुण विद्यार्थी की शान होती है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छे शिष्टाचार हमें सार्वजनिक स्थान पर लोगों का दिल जीतने में सहयोग करते हैं। इसलिए एक अच्छा और शिष्ट व्यवहार एक अद्वितीय व्यक्तित्व बनाने की क्षमता रखता है। अच्छे शिष्टाचार वाला व्यक्ति भावनाओं और परिवेश में रहने वाले दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान दिखाता है। वह कभी भी लोगों को अलग नहीं करता और सभी के लिए समान संबंध दिखाता है। शील, विनम्रता, दया और शिष्टाचार एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति के अनिवार्य लक्षण है। इसीलिए एक अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति कभी भी गर्व या अभिमानी महसूस नहीं करता है और हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है। अच्छे शिष्टाचार का अभ्यास करना और दिन भर इनका पालन करना निश्चित रूप से जीवन को पल्लवित करता है और शांति लाता है। लड़ाई, दुख और लालच को भंग करने के लिए शांति सशक्त औजार है। कई लोग कहते हैं कि बिना इस

0: के शांति नहीं हो सकती। इसके साथ ही भौतिक सुख सुविधाएं तथा अन्य संसाधनों से शांति होगी यह कहना भी गलत नहीं है। यदि इससे ही शांति हो जाती तो हम मंदिर या आदि के चक्कर क्यों लगाते। आवश्यकताओं को पूरे करते करते समय निकल जाता है और ना तो शांति मिलती है और ना ही खुशी। खुशहाल जीवन जीने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। बिना शांति के हमारा जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। जहाँ शांति है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ सुख है। इसीलिए अमूल्य शांति के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को देखना होगा, अपने आप को अच्छी तरह पहचानना होगा। जब हमारे अंदर शांति आएगी तभी हम स्वयं का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शांति ही विकास का रास्ता है, बिना इसके प्रगति हो ही नहीं सकती। जो सफल होना चाहते हैं उन्हें
1: इस उपयोगी वार्ता के साथ ही आज के बाल सभा कार्यक्रम का समय अभी यही समाप्त होता है। बच्चों, हमारा अगला कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग रंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत अभी आप सुन रहे थे श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी से गायन राग ठुमरी खमाज में। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
3: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के

0: दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
1: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
0: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
2: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
0: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
3: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमबी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के 1 दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
5: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
4: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
5: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
4: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, NIA को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने ये खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 13,000 करोड़ रुपीज इन चेन्नई तमिलनाडु दिस आफ्टरनून। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कंप्लीट्स 1 ईयर टुडे। Northern Railway says all train services to operate as per their normal schedule today. Navratri, 9-day-long festival to worship goddess Durga, begins with religious fervor and gaiety. Saudi authorities say attack on Riyadh airport killed 12 people and wounded over 300. And in men's cricket, India to take on West Indies in third T20 international in Indore this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. The Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi will also undertake a ride on the Chennai Metro from Porur Bypass Station to Poonamallee Bypass Station and back. The Poonamallee-Porur corridor features a unique 3.7-kilometer double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cant, Amba Samudram, Paramakudi, and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station scheme. Mr. Modi will perform darshan and puja at the Jalkandeswarar temple near the Porur Lake. More from our correspondent.
8: The stage is all set for the Prime Minister's visit today at Chennai. The city has brightened up to welcome the Prime Minister as he is set to launch several projects based on infrastructure in road development, ports and innovation in sciences. This includes laying the foundation stone and inauguration of key national highway projects to strengthen maritime infrastructure, expand cargo handling capacity and improve logistics efficiency. The road projects will reduce the travel time apart from easing traffic congestion in national highways in Salem, Madurai and Nagapattinam. He will also lay the foundation stone for lube oil-based stocks projects at the existing Manali refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited. Prime Minister will also inaugurate an additional coal berth project and lay the foundation stone for capital dredging works for additional container terminal at Kamarajar Port. Prime Minister will also participate in the Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garadia Hindu Vidyalaya School in Chennai before leaving to Delhi. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
7: Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana has completed 1 year today. The scheme was launched on this day last year to strengthen agriculture in 100 aspirational agricultural districts across the country. Our correspondent reports that the scheme has brought together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation, to address district-specific agricultural needs.
9: India's agriculture sector has significant potential across diverse regions and farming communities. Approved by the Union Cabinet in July last year, this six-year initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi on 11th October last year. It brings together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation to address district-specific agricultural needs. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana completed its first year today, marking a year of focused district-level action. During the first year, all 100 selected districts prepared their action plans, which are under implementation. With Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
7: Northern Railway has announced that all train services will operate as per the normal schedule today. Railways had decided to cancel mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin Railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. yesterday. We spoke to Northern Railway CPRO Himanshu Upadhyay about it.
2: Northern Railway cancelled all terminating trains who were arriving on New Delhi and Nizamuddin on 10th of October from 4 a.m. to 2 p.m. All the mail express trains were cancelled who were arriving at Nizamuddin, terminating at Nizamuddin on New Delhi. And today is 11th of October. And from today, all the services, all the mail express and all the passenger services will drive.

0: देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
1: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
4: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहली बार प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट की तैयारी। अभ्यर्थियों को मिलेगी पहले से भरी ओएमआर शीट। साहिबगंज में ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से आरपीएफ ने एक बांग्लादेशी युवक को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी और नेपाली मुद्रा बरामद। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। और सीआरपीएफ की अंतर बटालियन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का खूंटी में शुभारंभ। प्रतियोगिता में 11 टीमें दिखाएंगी दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन श्रद्धालुओं ने कलश स्थापना कर मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। अगले 10 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती के पाठ और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। नवरात्र को लेकर रांची नगर निगम ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेयर रोशनी खलको ने बताया कि सड़कों की मरम्मति और लाइटों के प्रबंधन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: रांची नगर निगम के द्वारा 53 वार्ड को 50-50 लाइट मुहैया कराए जा रहे हैं, ताकि पंडाल तक पहुंचने में या अंधेरा में है उसे उजाला किया जा सके। नालियां जो खुली हुई थी तो स्लैब डाल करके नालियों को ढका जा रहा है, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जो सड़कें गड्ढे हो गए हैं उन सड़कों गड्ढों को भरा जा रहा है, ताकि लोगों को असुविधाएं ना हो। जो नगर निगम कर सका है एक श्रद्धालुगणों की सुविधा के लिए वो कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य लेकर आए। उन्होंने यह भी कामना की कि यह त्योहार राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को मजबूत करे। झारखंड में 1 नवंबर को आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में करीब 5,60,000 अभ्यर्थियों को प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की तैयारी है। इस शीट पर अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और अन्य आवश्यक तैयारियां जानकारियां पहले से दर्ज रहेंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और अभ्यर्थियों की पहचान तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान में होने वाली त्रुटियों की आशंका कम करना है। रांची में राज्य खाद्य आयोग कोरम के अभाव में निष्क्रियता की स्थिति में है। आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ही एकमात्र सदस्य हैं जिनका कार्यकाल जनवरी 2027 में समाप्त हो रहा है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में खत्म हो रहा है। प्रभारी अध्यक्ष के अनुसार ऑफलाइन माध्यम से मिली 849 शिकायतों में से 389 का निष्पादन किया गया है।
2: व्हाट्सएप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से या अन्य माध्यम से ऑफलाइन जो केसेस, जो शिकायतें यहाँ पे आती हैं, निष्पादन हुआ है। राशन कार्ड में नाम जोड़ना, नया राशन कार्ड बनाना, आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला, धात्री महिला को पोषाहार दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा 5,000 और सेकेंड में अगर लड़की जन्म लेती है तो 6,000 की राशि दी जाती है, उस समय पे नहीं मिलता है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया के उस भ्रामक पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% का नया माल और सेवा कर GST लगाने की बात कही गई है। पात्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा गलत है। उसने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 57वीं GST परिषद की सिफारिश के बाद GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साहिबगंज जिले के करम टोला रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से आरपीएफ ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पाकिस्तानी और नेपाली मुद्रा बरामद होने की बात कही गई है। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद सुमन मियां के रूप में हुई है। आरपीएफ की स्काउट पार्टी ने शुक्रवार रात ट्रेन के जनरल कोच में जांच के दौरान उसे पकड़ा। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह रोजगार की तलाश में अवैध रूप से भारत आया था और जम्मू कश्मीर में कबाड़ के कारोबार से जुड़ा था। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में कल सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने करीब 10 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सड़क, पीसीसी पथ और नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, विद्यालयों का उन्नयन तथा छड़वा स्थित मां काली मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि ऐसे प्रयासों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
3: छड़वा डैम हजारीबाग के लिए बहुत सुंदर स्थल है। काली मंदिर का जो परिसर है, इसको विकसित करने का भी एक योजना सीसीएल के सीएसआर के मध्य से राज्य सरकार ने इसको करवाया है। ये जो एरिया है, ये प्रगति करेगा धीरे धीरे करके। हम लोग इसको एक धाम के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, हजारीबाग लोगों को घूमने का एक अच्छा पर्यटन स्थल मिल सके।
0: रांची रेलवे स्टेशन पर बांग्लादेशी घुसपैठ की आशंका को लेकर आरपीएफ ने सघन जांच अभियान चलाया। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जारी थ्रेट एडवाइजरी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर शिशुपाल कुमार ने बताया कि जांच के दौरान संदिग्ध सामान और यात्रियों के पहचान पत्रों की जाँच की गयी। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ और अन्य विस्थापित संगठनों ने संयुक्त आंदोलन शुरू किया है। शनिवार को टू टैंक गार्डन स्थित धरना स्थल पर आधा दर्जन से अधिक विस्थापित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। विधायक श्वेता सिंह और भाजपा जिला मंत्री एंजेला सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि नियोजन के लिए ठोस पहल होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी।
4: कई सालों से विस्थापितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो विस्थापित छले क्यों जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि पिछली बार पहला आंदोलन था, ऐसे कई अनगिनत आंदोलन पहले भी हुए हैं। चतुर्थवर्गीय रिजर्वेशन का मांग है, प्रिंटिस के नियोजन का और नियोजन नीति की मांगे हैं।
0: झारखंड में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 12 और 13 अक्टूबर को रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और लोहरदगा समेत कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना है। खूंटी स्थित सीआरपीएफ की 94वीं बटालियन परिसर में अंतर बटालियन और ग्रुप केंद्र क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई प्रतियोगिताएं होंगी। इस प्रतियोगिता में रांची और जमशेदपुर ग्रुप केंद्र की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन 94वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी पुष्कर भारद्वाज ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने दिल्ली में प्रदर्शन और नवरात्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सीईसी के खिलाफ सहपेजी का मार्च, दिन भर चली धरपकड़, हिरासत में दिल्ली। प्रभात खबर

0: की ये सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है जंतर मंतर सूना 7000 हिरासत में। हिंदुस्तान ने लिखा है सख्ती से सिमटा सिस्टम। दैनिक जागरण की लीड है नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में कोडरमा के सिविल सर्जन गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा, प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में पहली बार प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट की तैयारी, अभ्यर्थियों को मिलेगी पहले से भरी ओएमआर शीट। साहेबगंज में ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से आरपीएफ ने एक बांग्लादेशी युवक को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी और नेपाली मुद्रा बरामद। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। और सीआरपीएफ की अंतर बटालियन क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का खूंटी में शुभारंभ, प्रतियोगिता में 11 टीमें दिखाएंगी दमखम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
2: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करो।
1: अच्छा,
2: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
6: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
5: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
6: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन ए युक्त भोजन खिलाएं।
5: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हमारे दिल्ली और रांची केंद्र से आप सुन रहे थे समाचार। समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।

0: पेश है कार्यक्रम आवाज अभिनय और अद्भुत व्यक्तित्व अमिताभ बच्चन।
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से।
0: नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गुंजन और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शर्मिला। दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही एक पूरी कहानी आंखों के सामने घूमने लगती है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनते ही मन उत्साह, विश्वास और एक अलग से रोमांच से भर जाता है। और जब बात हो ऐसी ही दमदार आवाज की, गहरी आंखों की, लंबे कद की और अभिनय की अद्भुत प्रतिभा की, तो बस एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, अमिताभ बच्चन।

डॉन को, शहंशाह को, बिग बी को, सदी के महानायक को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। उनके खुशहाल और स्वस्थ जीवन की हम हार्दिक कामना करते हैं। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1942 में इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास मुकाम हासिल किया। आज का यह कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को, जिसने कभी पर्दे पर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, कभी प्रेम

अभिनय के अनेक रंग थे अमिताभ बच्चन में, हमेशा रहे और अब भी हैं। अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने किसी एक किरदार में बंद कर नहीं जिया। चुपके चुपके में उनके हाथ से प्रतिभा दिखाई दी तो अमर अकबर एंथोनी में उनके मनोरंजक अंदाज का एक और रंग सामने आया। सिलसिला में प्रेम की भावनाएं थीं, अग्निपथ में तीव्रता और संघर्ष था, ब्लैक में संवेदनशीलता की गहराई थी और पा में एक चुनौतीपूर्ण किरदार को निभाने की अद्भुत क्षमता थी। वहीं पीकू और पिंक जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की परिपक्वता और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संवेदनशीलता का परिचय दिया। फिल्म शक्ति का यह गीत आपके

अमिताभ बच्चन ने हमें सिखाया कि प्रतिभा के साथ अनुशासन हो, सफलता के साथ विनम्रता हो और कठिनाइयों के सामने हिम्मत हो तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। उनके प्रशंसकों के लिए यह वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि यादों का हिस्सा हैं। किसी के लिए शोले के जय, किसी के लिए डॉन, किसी के लिए आनंद के साथी कलाकार और किसी के लिए कौन बनेगा करोड़पति के आत्मीय होस्ट। जन्मदिन के इस खास अवसर पर हमारी ओर से अमिताभ बच्चन साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान बनाए रखें। इस उम्मीद के साथ कि उनके अभिनय का सफर यूं ही नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, अब मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार।

गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन पर केंद्रित कुछ फिल्मी गीत। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है जोहार पलामू कार्यक्रम का।

जोहार पलामू कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जोहार कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार से। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक अभिगम के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह सुविचार हैं अमिताभ बच्चन साहब के, जो हमें सिखाते हैं कि आप अपनी लगन, अपने धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता को हमेशा बनाए रखें। विकट परिस्थितियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आप सफलतापूर्वक विकट परिस्थितियों से भी बाहर आ सकते हैं। अमिताभ बच्चन को हम बधाइयां दे रहे थे उनके जन्मदिवस पर गीत गुंजन कार्यक्रम के तहत, और आज भी इस कार्यक्रम में भी आप बने रहेंगे। जोहार पलामू कार्यक्रम में उन पर फिल्माए कुछ गीत आपको हम सुनवाएंगे। आप सभी श्रोताओं को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नवरात्र का पहला दिन। बात करें मौसम की तो ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है। सुबह में काफ़ी कुहासा देखा गया और धीरे धीरे शारदीय नवरात्र के साथ ही शरद ऋतु का भी आगमन हो रहा है। तापमान की बात करें तो 30 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल यानी कि 12 तारीख को अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

इस खूबसूरत से गीत के बाद खबरों की दुनिया की ओर आपको लेकर चलते हैं। वन्य जीव संरक्षण का संदेश लेकर रांची से बेतला पहुंची बाइक रैली। वन विभाग और हार्ले डेविडसन की दो दिवसीय रैली का डाल्टनगंज में पारंपरिक नृत्य से हुआ स्वागत। वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर झारखंड वन विभाग और हार्ले डेविडसन रांची के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को दो दिवसीय बाइक रैली निकाली गई। वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के प्रति आम लोगों को जागरूक करना रैली का मुख्य उद्देश्य है। रांची से शुरू हुआ राइडर्स का काफिला मैकलुस्कीगंज, चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज और केशकी होते हुए बेतला पहुंचा। रैली का शुभारंभ रांची स्थित वन भवन से हुआ। PCCF वन्य प्राणी व मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक रवि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर राइडर्स को रवाना किया। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हार्ले डेविडसन के राइडर्स शामिल हुए। प्रमुख रूप से PCCF एवं बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ATM मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक SR नातेश और प्लामू टाइगर रिजर्व के उत्तरी प्रमंडल के उपनिदेशक प्रजेश जैना शामिल थे। रास्ते में विभिन्न पड़ावों पर रुककर राइडर्स ने स्थानीय नागरिकों, युवाओं और ग्रामीणों को वन्य जीवों की सुरक्षा तथा प्राकृतिक जैव विविधता के संरक्षण का संदेश दिया। डाल्टनगंज पहुंचने पर पलामू समाहरणालय परिसर में रैली का पारंपरिक नृत्य और लोक परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उपायुक्त समेत समाहरणालय के वरिष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रविवार को रैली बेतला से नेत्रहाट के लिए रवाना होगी। दूसरे दिन का मार्ग छिपादोहर, मुंडू, गारी, गारू, मारोमार, बारसाड़, अक्सी, मोहनाड़ और लोधफॉल से होकर गुजरेगा। नेत्रहाट पहुंचने के साथ ही दो दिवसीय रैली का समापन होगा। डॉक्टर का दायित्व है वंचित की सेवा करना, यह कहना है उपराष्ट्रपति का। एम्स देवघर में दूसरे दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। 173 विद्यार्थियों में 132 छात्राओं और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 846 होने का किया उल्लेख। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शनिवार को देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्नातक होने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को बधाई देते हुए कहा कि चिकित्सा की डिग्री केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बल्कि वंचितों और कमजोर वर्गों की सेवा करने का दायित्व भी है। उन्होंने युवा चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों से दक्षता, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति तथा नैतिक मूल्यों को अपने पेशे का आधार बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संथाल परगना क्षेत्र की आकांक्षाओं का उत्सव बताते हुए कहा कि एम्स देवघर जनजातीय और ग्रामीण समुदायों के लिए चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते अवसरों का प्रतीक है। उन्होंने स्नातकों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग संस्थान की सीमाओं से आगे बढ़कर गांवों, आदिवासी समुदायों और देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए करें। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संबंधी ज्ञान का सर्वोच्च उद्देश्य मानवता और समाज का कल्याण है। CP राधाकृष्णन ने भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो और तिलका मांझी की विरासत का उल्लेख करते हुए युवा स्वास्थ्य पेशेवरों से जन सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने मुख्यमंत्री की दिवंगत मां रूपी सोरेन को दी श्रद्धांजलि। रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास पर शनिवार को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन को ढाढ़स बंधाया, साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन कार्य का प्रमंडलीय आयुक्त ने लिया जायजा। लातेहार के सिकनिक स्थित विद्यालय में किया औचक निरीक्षण, निर्धारित समय में त्रुटि रहित कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अभिलेखों के डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमार सहाय ने शनिवार को लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित राज्य कृत उत्कर्मित मध्य विद्यालय सिकनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लातेहार के उपायुक्त संदीप कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने डिजिटाइजेशन कार्य की वर्तमान स्थिति, पूरे किए गए कार्य और लंबित अभिलेखों की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से कार्य में आ रही समस्याओं के प्रगति की समीक्षा भी की।
रांची में निकली शोभा यात्रा झांकी ने मोहा मन। शोभा यात्रा आकर्षक साज सज्जा और पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई। झांकी में छोटे छोटे बच्चों की रही सहभागिता, जगह जगह हुई आरती और पुष्प वर्षा। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल सभा रांची ने अग्रसेन भवन से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस अवसर पर पूरा वातावरण महाराजा अग्रसेन के जयकारों से गुंजयमान होता। शोभा यात्रा में अग्रवाल समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपरा और महाराजा अग्रसेन के आदर्शों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। आकर्षक साज सज्जा, पारंपरिक वेशभूषा और ऐतिहासिक गाड़ियों से सुसज्जित इस शोभा यात्रा ने नगर वासियों का ध्यान आकर्षित किया। देवी धाम में नवरात्र मेले को लेकर पुलिस सतर्क, एसडीपीओ ने किया निरीक्षण। चार राज्यों से पहुंचते हैं श्रद्धालु, रेलवे ओवरब्रिज नहीं बनने से जाम की समस्या बरकरार। हैदरनगर की खबर, शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही प्रसिद्ध हैदरनगर देवी धाम में दर्शन, पूजन और मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिव्यांश शुक्ल, पुलिस निरीक्षक विनोद राम और थाना प्रभारी तंजीवल मन्नान ने दुर्गा पूजा पंडालों तथा देवी धाम परिसर का निरीक्षण किया। देवी धाम में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यह नवरात्र के दौरान एक पखवाड़े तक मेला लगता है। संकल्प सेवा यात्रा के तहत दो चिकित्सक सम्मानित, मरीजों के बीच बटे फल। संकल्प सेवा यात्रा अभियान के तहत हैदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में दो चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर अजय जायसवाल ने बिहार सरकार के सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद सिंह और हैदरनगर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिष कुमार को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। रहमानिया स्कूल के विद्यार्थियों ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। रामबांध पंचायत के तारा स्थित आदर्श राजकीयकृत प्लस टू रहमानिया उच्च विद्यालय के शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने शनिवार को हैदरनगर पंसा मुख्य पथ के पास सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित सफर के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाध्यापक मनोज कुमार भी अभियान में शामिल हुए। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के महत्व की जानकारी दी। अपराध नियंत्रण और दुर्गा पूजा की सुरक्षा पर पुलिस अधीक्षक सख्त हुए। महिला और बुजुर्गों की शिकायतों के समाधान पर जोर, पुराने सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश। पलामू के पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को ब्लॉक बी स्थित सभागार में अपराध गोष्ठी और जिले में अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन और जन शिकायतों के त्वरित समाधान की समीक्षा की। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए उन्होंने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने तथा शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गोष्ठी में महिला एवं बुजुर्गों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया। घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों का समय पर समाधान करने और महिला थाना प्रभारियों और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को प्रत्येक 30 दिन में शिकायतकर्ता के घर जाकर उससे मिलने का निर्देश दिया। साल 2022 से पहले सूचना

प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान की प्रगति, लंबित रहने के कारणों और तकनीकी साक्ष्यों से जुड़े पहलुओं की जानकारी लेते हुए मामलों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा। डायल 112 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक थाना के पदाधिकारियों को 10-10 विद्यालयों में जाकर शिक्षकों और विद्यार्थियों को इसकी उपयोगिता एवं आपातकालीन सेवा की जानकारी देने का निर्देश दिया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, लोगों को समय समय पर विशेषज्ञ सहायता लेने के लिए प्रेरित करना और सभी के लिए सुलभ एवं समावेशी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया। साथ ही विधिक सहायता एवं परामर्श प्रणाली के उप मुख्य संतोष कुमार पांडे, सहायक वीर विक्रम बक्सराय, डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर श्वेता वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सिविल सर्जन ने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 का थीम जीवन के अनुभवों को सुने, वास्तविक आवाजें वास्तविक बदलाव है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों के अनुभवों को सुनना और नीतियों, उपचार, पुनर्वास तथा सहायता सेवाओं से जुड़े निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है। मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ सम्मान, संवेदनशीलता और सहानुभूति का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम मानसिक बीमारियों से जुड़े कलंक और भेदभाव को कम करने में भी सहायक हैं। आज सुबह 7 बजे तक कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री। सुबह की आर्द्रता 93%। 24 घंटे में बारिश नहीं। जिले में सुबह 7 बजे तक कोहरा देखा गया। मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा 93% रही, जबकि शाम को यह घटकर 73% पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में बारिश नहीं हुई, वर्षापात 0 मिलीमीटर दर्ज की गई। यह जानकारी शनिवार की थी। दशहरा शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील, अफवाहों पर लगेगी पुलिस की रहेगी नजर। दशहरा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को भवनाथपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी शंभूराम ने की। बैठक में आपसी भाईचारा बनाए रखने और विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी ने कहा कि पर्व के दौरान पुलिस हमेशा सतर्क रहेगी, लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई। दुर्गा पूजा से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच, स्वास्थ्य और खाद्य गुणवत्ता के नियमों का पालन करने की हिदायत। दुर्गा पूजा के दौरान सभी शहरों में शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने गुमला शहर से पालकोट तथा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। वैसे ही पलामू जिले में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी है। इस दौरान सरसों तेल, घी और पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला रांची भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र, गोगी कुमार प्रभाकर और आशा राज ने किया। टीम ने दुकानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की और संचालकों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है, आप सभी भी तैयारियों में लगे होंगे और आज नवरात्र का पहला दिन भी है। आइए आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए इस गीत के बाद आइए हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता प्रोफेसर सुमित कुमार मिश्रा से। विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य एवं लक्ष्य। वार्ताकार है प्रोफेसर सुमित कुमार मिश्रा।
1: ग्रामीण का लक्ष्य एवं क्रियाकलाप। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे संक्षेप में PMAYG भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर एवं कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जो कि पहले की इंदिरा आवास योजना का ही एक परिष्कृत रूप है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। दूसरा उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांग लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, उन्हें बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करना, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। इस योजना का अगला उद्देश्य है सभी के लिए स्वच्छता। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों में शौचालय की अनिवार्यता को ध्यान में रखा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा मिले। इस योजना के लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य 2022 तक सभी बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान प्रदान करना था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की रूपरेखा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए यह अनुपात 90-10 का है। लाभार्थियों का चयन। लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके तहत सबसे गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय सहायता। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है, लेकिन औसतन 1.2 लाख रुपए से लेकर, यानी कि 1,20,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी की लागत को भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि MGNREGA के तहत कवर किया जाता है। लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित कठिन क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना वाले जिलों में 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGA या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के तहत मिलाकर शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इसके अलावा MGNREGA के साथ अपने घर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को मौजूदा दरों पर 90-95 व्यक्ति दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ पानी, LPG और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं। तकनीकी सहायता। लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके तहत लाभार्थियों को भवन निर्माण की तकनीक, सामग्री की गुणवत्ता और निर्माण के मानकों के बारे में जानकारी दी जाती है। जागरूकता कार्यक्रम। योजना के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों को योजना की विशेषताओं, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए पंचायत

स्तर पर कार्यशालाओं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। निगरानी और मूल्यांकन। योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके तहत केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है जो योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करती है। इको फ्रेंडली मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इको फ्रेंडली और टिकाऊ मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके तहत स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल करके मकानों का निर्माण किया जाता है। विशेष समूहों के लिए प्रावधान। योजना के तहत विकलांग, वृद्ध, महिला मुखिया वाले परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे इन समूहों को प्राथमिकता दी जा सके। योजना की सफलताएं और चुनौतियां। पहले नज़र डालते हैं योजना की सफलताओं पर। वृहद पैमाने पर मकानों का निर्माण। योजना के तहत लाखों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। रोजगार सृजन। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार का सृजन हुआ है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यह योजना न केवल मकान प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण समुदायों में सामाजिक और आर्थिक उत्थान का साधन भी बनी है। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक सुरक्षा। पहला पक्का मकान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इससे बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिला है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण। योजना के तहत कई मकान महिलाओं के नाम पर बनाए गए हैं जिससे उनकी समाज में स्थिति मजबूत हुई है और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। तीसरा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। पक्के मकानों के साथ शौचालय, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है और लोगों का जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। चौथा, शिक्षा का प्रोत्साहन। सुरक्षित और स्थिर घर बच्चों के बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं। इससे बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, रोजगार के अवसर। मकानों के निर्माण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। इससे स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। दूसरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास। योजना के तहत निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से स्थानीय व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तीसरा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास। मकानों के साथ साथ योजना के तहत अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होता है। प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान। पहले चुनौतियों पर नज़र डालते हैं। पहली चुनौती, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं। योजना के सफल क्रियान्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय अड़चनों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण योजना की प्रगति में बाधा आती है। दूसरा, तकनीकी समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता की कमी होती है, इससे मकानों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं जिससे योजना की प्रगति धीमी हो जाती है। चौथा, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ आती। समाधान। पहला, वित्तीय संसाधनों का संवर्धन। सरकार को योजना के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना चाहिए ताकि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। दूसरा, तकनीकी सहायता पर विस्तार। निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी सहायता का विस्तार किया जाना चाहिए जिससे मकानों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा समाधान, आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के

0: प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाई जानी चाहिए ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। चौथा समाधान, जागरूकता और प्रशिक्षण। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर किया जा सके। योजना की उपलब्धियाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विभिन्न उपलब्धियाँ हैं जिन्होंने इसे ग्रामीण भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाया है। पहली उपलब्धि, करोड़ों मकानों का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित 2,95,00,000 मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से पात्र लाभार्थियों के लिए 2,94,00,000 से अधिक मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 फरवरी 2024 तक 2,55,00,000 से अधिक घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। झारखंड राज्य की स्थिति पर अगर नज़र डालें तो झारखंड राज्य का आवंटित लक्ष्य 15,92,171 मकान थे और राज्य द्वारा मंजूर आवास 15,92,168 मकानों का हुआ था, जिसमें से 1 फरवरी 2024 तक 15,58,228 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। ये सभी आंकड़े प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट से लिए गए हैं। दूसरा, ग्रामीण बुनियादी क्षेत्रों में सुधार। दूसरी उपलब्धि के अंतर्गत मकानों के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार हुआ है जिससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। समाज के हर वर्ग को लाभ, ये तीसरी उपलब्धि है। इस योजना ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है, विशेषकर महिलाएं, विकलांग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय। चौथी उपलब्धि, रोजगार सृजन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। योजना के भविष्य की दिशा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि सरकार इस योजना का और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे भविष्य की योजनाओं में मुख्यतः वित्तीय आवंटन में वृद्धि, तकनीकी सुधार, निरंतर समीक्षा और मूल्यांकन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग के साथ साथ सामुदायिक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अंततः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों के लिए पक्का मकान उपलब्ध कराकर उनकी जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया है तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दिया है। इस योजना की सफलता का श्रेय इसके सुचारू क्रियान्वयन और सरकार की दृढ़ता को जाता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार के प्रयासों और सुधारात्मक कदमों के माध्यम से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य एवं लक्ष्य, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर सुमित कुमार मिश्रा की वार्ता। श्रोताओं, आज हम केंद्रित कर रहे हैं सारे गीतों को अमिताभ बच्चन जी पर, क्योंकि आज है अमिताभ बच्चन का जन्मदिवस। उन्हें अपने कार्यक्रम में हम बधाइयां दे रहे हैं और उनके गीत आपको सुनवा रहे हैं। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए, इनमें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और वर्ष 2018 में घोषित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रमुख हैं। लेकिन किसी कलाकार की असली उपलब्धि केवल पुरस्कारों की संख्या नहीं होती, असली उपलब्धि होती है लोगों के दिलों में बनाई हुई जगह, और अमिताभ बच्चन ने यह जगह कई पीढ़ियों से दर्शकों के बीच बनाई है। तो दोस्तों, आज 11 अक्टूबर को हम हिंदी सिनेमा के उस महान कलाकार को जन्मदिवस की शुभकामनाएँ देते हुए यह गीत आइए आपको सुनवाते हैं।

0: दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: जोहार पलामू कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और अब बारी है आज के इतिहास के पन्ने पलटने की। 1869 में थॉमस एल्वा एडिसन ने वोटों की गिनती के लिए मशीन के पेटेंट का आवेदन आज ही की तारीख को दिया था। 1981 में भारतीय शांति सेना IPKF ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की थी। सन 2000 में नासा ने अपने 100वें स्पेस शटल मिशन STF-92 को लॉन्च किया था। 2008 में पूर्व PM मनमोहन सिंह ने कश्मीर घाटी में पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी आज ही की तारीख को दिखाई थी। 1902 में 11 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 1916 में नानाजी देशमुख भारत के प्रमुख समाज सेवक और जनसंघ के बड़े नेता का जन्म हुआ था। 1923 में भारत के महान गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक हरिश्चंद्र मल्होत्रा का जन्म हुआ था। 1942 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था। 1993 में हार्दिक पांड्या, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका जन्म हुआ था। 1911 में सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या जो थी और समाज सेविका थी, इनका निधन हुआ था। आज के इतिहास की जानकारी के बाद कार्यक्रम का अगला गीत अमिताभ बच्चन पर केंद्रित, आइए आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओ, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विक और फलाहारी भोजन का महत्व है। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो नवरात्रि के कुछ खास व्यंजनों की आई जानकारी मैं आपको दे दूं। साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना मूंगफली के दानों, आलू और सेंधा नमक से बनने वाली खिचड़ी है। यह व्रत में काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी फायदेमंद भी है। कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी आप बना सकते हैं या इसका पराठा भी आप बना सकते हैं। यह काफ़ी स्वादिष्ट होता है। व्रत वाले आलू की सब्जी भी बहुत लोग खाते हैं, जिसमें सेंधा नमक और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह डाल के इसे बनाया जाता है बिना प्याज लहसुन का, और यह भी काफ़ी टेस्टी होता है। स्नैक्स और नाश्ते की बात करें तो साबूदाना बड़ा टिक्कियाँ बना सकते हैं। साबूदाना और उबले आलू को मैश करके कुरकुरे बड़े या टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, जिसे हरी चटनी के साथ परोसा जा सकता है। अरबी की टिक्की भी बहुत लोग बनाते हैं या कोफ्ता भी बनाते हैं। व्रत के कुछ पकौड़े भी होते हैं जो कि सिंघाड़े के आटे में या आलू के साथ बनाए जाते हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। और समा के चावल या पुलाव भी बहुत लोग बनाते हैं। जीरा, हरी मिर्च और मनपसंद व्रत वाली सब्जी जैसे आलू या गाजर की सब्जी के साथ इस पुलाव को तैयार किया जाता है। और साथ ही अगर ड्रिंक्स की बात करें तो आप फलों के जूस बना सकते हैं, लौकी का हलवा बना सकते हैं और लौकी की खीर भी बना सकते हैं। डेजर्ट्स भी कई तरह के बनाए जाते हैं नवरात्र के दौरान, जैसे मखाने की खीर, सिंघाड़े का हलवा, लौकी का हलवा, दूध, भुने हुए मखाने, चीनी और ड्राई फ्रूट्स से बनी मखाने की खीर काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है और काफ़ी एनर्जी भी देती है। वैसे ही सिंघाड़े का हलवा जो है वह भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है और काफ़ी ऊर्जा देने वाला होता है। लौकी के हलवे में लौकी को कद्दूकस करके दूध और मावा के साथ ऐसे मिलाकर अगर आप बनाते हैं तो यह काफ़ी हेल्दी होता है, स्वादिष्ट तो होता ही है। ड्रिंक्स में आप तरह तरह के ड्रिंक्स बना सकते हैं। अगर तरबूज बाज़ार में अवेलेबल हो तो आप तरबूज का जूस बना सकते हैं, मौसमी का जूस बना सकते हैं, अनार का जूस बना सकते हैं या फिर केले के साथ इसे मिलाकर मिल्क शेक की तरह भी बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नवरात्र का जो आहार है या सात्विक आहार है काफ़ी पौष्टिक होता है और काफ़ी आपके मन विचार को शुद्ध रखता है। तो अब कार्यक्रम का अगला गीत है, हम आपको आइए सुनवाते हैं।

0: इस गीत के साथ ही आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यही समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए समाचारों के लिए हम आपको दिल्ली केंद्र लिए चलते हैं, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और

0: को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे श्रद्धालु उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मां जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। उन्होंने ये भी कामना की है कि नवरात्रि का पर्व राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका व्यक्तित्व और संदेश पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल के दौरान उनकी निर्भीक आवाज को याद किया। उन्होंने कहा कि वे सुशासन और समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि 3 नवंबर को होने वाले मध्य अवधि चुनावों से पहले ईरान अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस जारी संघर्ष को जल्द ही खत्म कर सकता है। साउथ अमेरिका के शहर टेनेसी में एक राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस सोच के साथ और कदम उठा सकता है, इससे अमेरिका को राजनीतिक नुकसान होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज के साथ तूफान और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तीन चार में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट
0: हाँ
1: बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं।
0: या
1: गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी
1: चलिए
0: बहुत पसंद है।
1: जी, सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
0: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा ना माने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
1: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो कि क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर। आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
0: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
1: हाँ, ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4

0: बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया
1: हाँ
0: और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए,
1: हाँ
0: तो क्राफ्ट पे काम करते रहो। वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए
0: हाँ
1: एक। अगर हम
0: बिल्कुल।
1: देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत
0: नहीं,
1: कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्कि का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट
1: हाँ
0: 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विथ कल्कि।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार के,
0: हाँ
1: हम जैसा
0: हाँ
1: कह रहे थे, ऐसा
0: हाँ
1: लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी
0: हाँ
1: तरह से निभा सकती हैं।
0: हाँ
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी
0: बिल्कुल।
1: सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का,
1: हाँ,
0: साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।

0: कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा, और उसने मना कर दिया मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम.
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है.
0: जी
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के.
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था. हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए. वो मैं

0: अनमोल अहुजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो, लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
1: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
0: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
1: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
0: और टाइम बहुत कम था
1: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
0: मैंने सीजन 2 की थी, सीजन 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
1: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
0: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
1: जी।
0: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है, कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
1: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
0: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
0: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
1: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
0: मैं
1: में
0: कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
1: हाँ।
0: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
1: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
0: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं, जिनके तीन चार सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी, हाँ, उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से
1: वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है, तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं, तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे, तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे,
1: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में, और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
0: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और उस तरह से आपको एक
1: वो होता ही है। मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया, तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
0: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं।
1: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना कभी।

0: सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
1: जी,
0: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो, तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे। यहाँ बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह है रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे, आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है, बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है, कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग, हाँ, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे, तो बॉम्बे आओगे, तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे।
1: हाँ,
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है मुंबई में। फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज, तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है, उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली, ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए। और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट, बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है, तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: देखिए
0: तरह से
1: जैसे
0: आपने?
1: आप और काम करते जाते हैं आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें, मिलके प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें। 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूं कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो।
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहें, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए।
1: कोशिश जारी रखिए, अगर आप अच्छे एक्टर हो आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोअर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उनमें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा। तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
0: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से?
1: हाँ, वो डेली सिक्स का रहमान का रहना तू,
0: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इंपॉर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी,
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूं कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
0: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते हैं।
1: ह्यूमर कुछ भी, जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कॉन्टेक्ट करेगा।
0: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
1: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा। घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे, जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
0: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
1: बहुत

0: इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है,
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है। अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं, अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं,
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉर एन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा किया?
0: हम आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कैपेबिलिटी। अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों
1: अपने किरदार को पकड़ने के लिए, अच्छी तरह
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी, जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट, तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था, और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट, लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का, तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50

0: लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है। बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के वो
0: बिना।
1: आए
0: दो
1: और
0: बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहां के दो बच्चे कास्ट किए थे। उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता।
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है
0: हाँ,
1: मतलब
0: वो
1: कि
0: गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहां जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हूँ। हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे
0: नहीं,
1: बाद के लिए
0: पहले
1: छोड़?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने
0: ये
1: मतलब
0: मैंने
1: डायरेक्शन तो
0: वो,
1: आपने कहा।
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी
1: अच्छा
0: तो घनचक्कर थी, 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई। फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली,
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें?
1: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स,

0: खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, एफटीआई प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप।
0: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
0: जी बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना? बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। जैसा कि आप जानते हैं कि विविध भारती हर महीने अपने स्टूडियोज में एक विशेष आयोजन करता है जिसका नाम है सृजन भारती। सृजन भारती के अंतर्गत कलाओं की बातें की जाती हैं, संस्कृति की बातें की जाती हैं, और चूंकि सितंबर के महीने में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, इसलिए विविध भारती ने एक विशेष आयोजन किया सृजन भारती के तहत, और कुछ कवियों को आमंत्रित किया गया और एक कवि गोष्ठी हुई जिसमें कुछ श्रोता और बहुत सारे कवि भी शामिल थे, और शामिल थे विविध भारती परिवार के सदस्य। आपको बता दें कि विविध भारती के स्टूडियो में आयोजित इस काव्य तरंग में शामिल कवि सुभाष कावरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा, और इस कवि गोष्ठी का संचालन किया रेडियो सखी ममता सिंह ने। तो चलिए इसके संपादित अंश आपको सुनवाते हैं आज के विविधा कार्यक्रम में।
1: आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज के इस

0: सृजन भारती के आयोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी जो गणमान्य कवि पधारे हैं आपका स्वागत, और जो प्रोफेसर रविंद्र जी आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में आपका स्वागत, और सभी जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं आप सभी का स्वागत। अब कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं। दरअसल आज एक कवि सम्मेलन का आयोजन है इस सृजन भारती के इस आयोजन में। शब्द जब भावों से मिलते हैं तो कविता जन्म लेती है, और जब कविता स्वर पाती है तो वो सीधे दिल में उतर जाती है। कविता महज शब्दों की सजावट नहीं, ये मन के उस कोने की आवाज है जहां भाव चुपचाप चलते रहते हैं। कभी ये प्रेम बनकर मुस्कुराती है, कभी समय के सवाल से रूबरू कराती है, और कभी जीवन की छोटी सी बात में कोई बड़ी सच्चाई कह जाती है। आज की सृजन भारती कुछ ऐसे ही शब्दों, संवेदनाओं और एहसासात के नाम है, जहां शेर व शायरी है, गीत है, गजल है, व्यंग्य, हंसी की फुहार पड़ेगी और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं दिल को छू जाने वाली ये खामोशी भी होगी जो सुंदर कविता सुनने के बाद देर तक हमारे भीतर, हमारे दिल में बसी रहती है, उतरती है। दरअसल ये जो कवि हैं शब्दों से दुनिया रचते हैं और अपनी कविता से हमारे मन में जगह बनाते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं उन कवित्री से जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा एक प्रतिष्ठित कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अनुवादक भी हैं। उनकी लेखनी कविता से लेकर बाल साहित्य, शोध और राजभाषा तक विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। भीड़ तो जिंदा है प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है, और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं, और कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इसके अलावा फिल्म खानदानी शफाखाना और फिसड्डी वेब सीरीज सहित बहुत सारे रचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने गीत और गीतांश लिखे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित अनेक मंचों पर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ ये कर चुकी हैं। डॉक्टर दमयंती दीपा हिंदी लोक भाषा की सेवा में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो आइए डॉक्टर दमयंती जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आइए मंच संभालिए।
1: सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विविध भारती मुंबई का, और विशेष रूप से ममता सिंह जी का, जिन्होंने आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बहुत ही शानदार आयोजन है उसमें मुझे आमंत्रित किया है। और मैं मंच में सभी को प्रणाम करते हुए, यहाँ मुंबई जैसे महानगर में और वो भी विविध भारती मुंबई के प्रांगण में, परिसर में, इतना शानदार आयोजन करना, मुबारकबाद मैं इसके लिए इन सबको देती हूँ। क्योंकि हिंदी जो है वो केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, वो हमारा गौरव है, सम्मान है। और आप सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में वो प्रेम का एक सेतु है जो कि हम सब की भावनाओं को, हमारे शब्दों को एक साथ बांधता है और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है वह सेतु। तो हिंदी को हम सब अपने व्यवहार में लाएं, और जो कि जैसा मैं देख रही हूं आज उसी उपलक्ष में यह आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। तो मैं आप सभी को भी मुबारकबाद देती हूं हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की, और दो माहिया मैं समर्पित करना चाहूंगी, सबसे पहले माँ हिंदी को।

जाऊं। और एक मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम, जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश

हम हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, सब नफरतें भुला

बचा लो इस वतन के वास्ते, रंग सुर्ख तुम बचा लो इस वतन के वास्ते। तो एक ये थे कुछ माही और मुक्तक, एक गीत आपके सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। तुम री चाहों से हमारे मन में हो,

0: तनु में हो। धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहां हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ, जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं, उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ। जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है, दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई, जो इनकी कामयाबी में शामिल है। उन्होंने सिने गीतकार जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं जो भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों पर आधारित है। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
2: आप लोग अनुमति दें तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया

2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ, धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसके सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। उसी के लिए जिसने मुझे शायर बनाया। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। हर जन्म दिन पे उनको देते हैं हम बधाई, फिर भी ये कैसे पूछें कितने साल के हैं। तो एक मुक्तक और उनके लिए, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया। तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, इस बेखुदी ने देखिए क्या क्या बना दिया। पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। तो हंसकर कह दिया कान्हा ने, इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानी श्याम घन, काला मेघ। तो काले मेघों के बीच से यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई पड़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से। अब बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। इतने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है। मिली है प्रेम को एक दिव्यता मीरा दीवानी से, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है। मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है। मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से, कभी आंसू कभी सपने कभी कांटे कभी खुशबू, मिला है देखिए क्या क्या बशर को जिंदगानी से। और मुंबई महानगर के निवासियों को ये शेर मैं भेंट कर रहा हूँ कि शहर की इस भीड़ से घबरा के इस दिल ने कहा, अब मुझे एक झोपड़ी गंगा किनारे चाहिए। ये बताओ क्या तुम्हें भी चांद तारे चाहिए, या कि दिल के वास्ते दिलकश नजारे चाहिए। एक सीधी सादी गजल है कि हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते।

0: नहीं याद नहीं, पर ऐसे लोग निजामत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूँ। तो इस कविता का शीर्षक यह है गृह स्वामिनी, कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो।
1: वाह वाह वाह।
0: कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो। छलक आए हैं माथे पर पसीने के कई मोती, तुम इससे बेखबर चूल्हे पे कोई डिश पकाती हो। सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला। सुहाना लगता है हर पल तुम्हारा घर में यूं होना, सजा कर थाल पूजा का दिखो तुम लक्ष्मी जैसी, जला कर दीप कर देती हो रोशन घर का हर कोना। सुबह से शाम तक घर को तुम ही गुलजार करती हो, बड़ों का मान रखती हो, सभी का करती हो तुम आदर, तुम अपने पद से बच्चों से बहुत ही प्यार करती हो। देखिए आखिरी पंक्तियाँ, किचन में रोटी कैसे जलती है, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, तवे पे रख के तुम रोटी पलटना भूल जाती हो। मोहब्बत से लगन से आशियां तुमने सजाया है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है, यही सच है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में थे तब से लिख रहे हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 35 साल पहले की बात है, है ना। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, ख्वाबों को एक बच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। और कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, फन को खेल तमाशा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। तन पर तो उजले कपड़े थे पर जो मन के काले थे, उन लोगों को अच्छा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। बिछड़ने पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता है, और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए ये शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्त व ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्त व ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है बेवफाई पर, यह लाजिम है कि अब इस पर नया कानून आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में जो है ना कभी कभी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आप किसी जो है ना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, उसमें BA MA वाले भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को देख करके ये ख्याल आया एक गजल का, कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह वगैरह पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने

0: खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर, खुददारी पहचान वगैरह, दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह, दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह, कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह, पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि लोकप्रिय मंच संचालक धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं पर। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
2: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती है, उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां अक्सर कहा करता हूँ। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा, मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ, आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है परचे जांच जांच के, हमने ये जाना है परचे जांच जांच के, जाना है परचे जांच जांच के, हमने ये जाना है परचे जांच जांच के।

0: मैं बेंगलोर नंबर 19 वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं, वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई, उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ दो बच्चे भी थे। बोले इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया। आधुनिका बोली, ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली, माय हनी, मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले। मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली, हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेज चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेज शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, देखिए मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली, जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बोले, हाँ इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए। ये कौन है बेबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूं, तो वो खुश हुए। बोले, वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो, कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली, मेरे पापा हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा, वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें, इनकी बात भी रखने की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढ कर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई ये स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी आधुनिका जी से प्रभावित ही था। मैंने चौक ढूंढने की कोशिश की, फिर वहां से स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही बाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक और वही पापा जी मिले, और आधुनिका भी वैसे ही मिले जैसी मुझे मिली थी। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: दोस्तों, हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ, ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15, 20, 25, और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी, वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग में यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब आती है तो उसे कलयुग का नाम दिया जाता है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक व्यंग करना चाहता हूँ। शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है, ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर

0: का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना, शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े, उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा, जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया, और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया। जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो, मैं अब ठीक हूँ इसलिए अपने घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं, रोज रोज नई। कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है, वो किसी भी विधा में लिखे, चाहे वो शायरी करे, चाहे गीत कहे, गजल कहे, व्यंग कहे, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ, शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हो और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। और अंतिम है जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है। और उनके कुछ सीरियल्स है मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए। हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई आखिर हास्य के काव्य संग्रह है, और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है, और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है, और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो है आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी।
2: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर

0: सुनिए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वो धन्य थे सपूत, उनकी धन्य थी जवानियां, के कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको मां ने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया, वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले, कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पांत में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग। वतन के शहीदों को हमने अगर भुला दिया, अभी तो माए ना जनेंगी देश भक्त लाल फिर कभी, तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहां बसंती चोलों वाले आज कल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग।
1: क्या बात, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, क्या बात।
2: अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है, और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी उपस्थित हैं, और हम प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं, वो कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, और थोड़ी जानकारी दे दें उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल फिर से, प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही, और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर 12 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है, और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने, 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है, SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है, और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं, तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद में गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर 1 वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है और जो हमारी भावनाएं हैं उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, चार लाइनें हैं कि सिर्फ

0: आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वह काल जी कविता है। तो काल जी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सब इस चीज को जान चुके हैं। यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वाङ्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं पांच, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्र क्षते सद्यः पर निवृत्ते कांता सम्मितयो उपदेश युजे। इसमें सब कुछ तो है, लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता सम्मित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता सम्मित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, हम किस मौसम में बैठे हैं। वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है, और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन दूसरों को देने के लिए, उस आनंद, उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वे हमें ये सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहृदयता से रहें और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से, जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य की इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में अवगाहन किया है, हम जो इसमें डूबे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं, और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो, व्यंग्य हो, लेकिन जो उदात्तता इनकी कविताओं में है, जो जीवन की श्रेष्ठता है, और हमने जिस आनंद का इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन, और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं, और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है, और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बा समुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी

0: रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल संगीत चित्रगुप्त का, यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से ये गाना है, उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत एआर रहमान का। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम जारी है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम को लेकर। लाइफ पार्टनर इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और कीर्ति सरगठिया की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल संगीत है प्रीतम का।
1: Hey!

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है।

0: डॉक्टरों के मन में।
1: जो भी हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया।

0: बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जोहर महमूद इन हांगकांग। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में, कमर जलालाबादी के बोल संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

दर्दों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली तेल शोधन संयंत्र में ल्यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का

0: भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर नगर निगम, थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। गांधीनगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय 130 उम्मीदवार 11 वार्ड की 44 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi arrived in Chennai this morning where he will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees. The Prime Minister held a roadshow en route to the venue of the event at Porur in Chennai where he flagged off the metro rail service from Porur to Ponnamalai. The Prime Minister travelled along with the Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on the metro rail. The 14.5-kilometre metro rail service features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operation. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Ambasamudram and Paramakuri and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat Station scheme. Later, Mr. Modi will leave for the IIT Madras campus, where he will dedicate the Sudha Gopalakrishnan Brain Center and perform Darshan and Puja at Jal Kandeshwarar Shiva Temple. Delhi Metro Rail Corporation has informed that the entry and exit gates of all 45 metro stations, which were closed due to security reasons, are now open. Meanwhile, the Delhi police said that a lot of videos have been circulated on social media depicting incidents of the past, incidents of other states, or AI-generated content designed to evoke feelings of unrest among the general public. Delhi police advise people to restrain themselves from forwarding such posts and spreading such news. CJP's Abhijit Dipke, Ashutosh Raka and Saurav Das, who were placed under preventive arrest yesterday, have been released by a special executive magistrate court in New Delhi today. According to the Delhi police, all due legal procedures were followed and the three individuals were produced before the special executive magistrate, Delhi Cant, this morning. The police said that they were released upon furnishing a surety bond of 50,000 rupees for maintaining peace and good behaviour for a period of 1 year. The Supreme Court today directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure the metro services operate according to the normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. The court said metro and train services should function normally in accordance with the prevailing law and order.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में धन धान्य योजना के एक वर्ष पूरे। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की पहल, 36 केंद्रीय योजनाएं शामिल। बच्चों के लिए विशेष कानूनी सहायता दल गठित करने का मुख्य न्यायाधीश का आग्रह, कहा गिरफ्तारी से पुनर्वास तक बच्चों को मिले कानूनी सहायता। कोडरमा के सिविल सर्जन हिरासत में, हजारीबाग की नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस कर रही है पूछताछ। राज्य भर में शारदीय नवरात्र का उत्साह, लोहरदगा में पुणेरी ढोल के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रांची में दूसरे T20 में हार के बाद तीसरे मैच में जीत के इरादे से उतरेगा भारत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
1: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती है। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह दल पुलिस थाने में गिरफ्तारी से लेकर अंतिम आदेश और पुनर्वास तक बच्चों का प्रतिनिधित्व करे। नई दिल्ली में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि बच्चों को सशक्त बनाना होना चाहिए। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार को नाबालिग छात्रा से कथित यौन संबंधी यौन शोषण के आरोप में जुड़े मामले में पुलिस ने शनिवार देर रात हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार एसपी कुमार शिवाशीष के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने चंदवारा थाना क्षेत्र के उर्मा स्थित एक रेस्टोरेंट के पास से उन्हें हिरासत में लिया। बताया गया है कि पीड़िता हजारीबाग जिले की रहने वाली है और उसने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस शिकायत और संबंधित साक्ष्यों की जाँच कर रही है। पलामू में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस बाइक रैली के जरिए वन्य जीवों के संरक्षण का संदेश दिया गया। रैली में पलामू टाइगर्स रिजर्व और प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित रखने की अपील की गई। इस दौरान उपायुक्त दिलीप शेखावत ने इस रैली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जंगल जमीन के संरक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।
2: पर्यावरण संरक्षण हो, जल का संरक्षण हो, जंगलों का संरक्षण हो और उसके साथ हम विकास की ओर अग्रतर हो, इसका मैसेज बाइक रैली के माध्यम से दिया जा रहा है। कैसे हम लोग अपने युवाओं की जो शक्ति है उनको सही डायरेक्शन में डालें और आगे ये बेतला होते हुए नेत्रहाट जाएगी, जहां पे झारखंड का प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर रिजर्व है, उसको भी हमें बचाना है। वहां के जो जीव जंतु हैं उनके प्रति भी हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको हर किसी को निभाना है।
0: खूंटी में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर JSLPS और यूनिसेफ झारखंड के समन्वय से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य किशोर किशोरियों और महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और सामाजिक संकोच दूर करना था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले अटूट संकल्प के साथ जन सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं खाद और यूरिया की उपलब्धता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत के किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार यूरिया पर भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है।
3: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं।
0: साहिबगंज जिले में किसान धान गेहूं सहित विभिन्न फसलों की खेती में नीम लेपित यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। साहिबगंज के किसानों ने बताया कि इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है।
4: मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। धान के खेत में नीम कोडेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे कीटनाशक जितने भी हैं वो खत्म हो जाते हैं और पैदावार बहुत अच्छा ही होता है।
5: लाल पंडित है। हमने उर्वरक का जो प्रयोग किए हैं तो नीम लिपित यूरिया का। हमारे खेत में पहले यानी कि धसना बीमारी लगता था, कीट लगता था, नीम लिपित यूरिया डालने से वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है और उत्पादन भी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है।
0: लोहरदगा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मां दुर्गा के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पुणेरी ढोल टीम शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण रही। शारदीय नवरात्र पर गढ़वा के विभिन्न पूजा पंडालों और देवी स्थानों में विधि विधान से कलश स्थापना की गई। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने के लिए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सभी पूजा पंडालों और

0: चौक चौराहों पर पुलिस की कड़ी नजर है।
1: लगा पुलिस के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त पुलिस के बल और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी पंडालों का भौतिक निरीक्षण करते हुए वहाँ जो भी सुरक्षा मानक राज्य सरकार के द्वारा बताए गए हैं उनका वो अनुपालन करें। कहीं भी आपको किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत CCR को जो कम्पोजिट कंट्रोल रूम है उसको सूचित करें।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,33,000 रुपये प्रति किलो है। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक शोरूम और सर्विसिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। अग्निशमन कर्मियों ने 2 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। घटना के समय शोरूम में 25 से 30 वाहन मौजूद थे। कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने और लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 3रा मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। रांची में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर एक श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में धन धान्य योजना के 1 वर्ष पूरे, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की पहल, 36 केंद्रीय योजनाएं शामिल। बच्चों के लिए विशेष कानूनी सहायता दल गठित करने का मुख्य न्यायाधीश का आग्रह, कहा गिरफ्तारी से पुनर्वास तक बच्चों को मिले कानूनी सहायता। कोडरमा के सिविल सर्जन हिरासत में, हजारीबाग की नाबालिग छात्रा की शिकायत पर पुलिस कर रही है पूछताछ। राज्य भर में शारदीय नवरात्र का उत्साह, लोहरदगा में पुणेरी ढोल के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रांची में दूसरे T20 में हार के बाद 3रे मैच में जीत के इरादे से उतरेगा भारत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का।
1: एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है, विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है। और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछे हों तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिवहरि का। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बतें फिल्म का यह डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ये चाबी निकाल कर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद है। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वह अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को यह घमंड था कि वह अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया।

है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये देना चाहिए? अगर आपने हमारा इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहाँ तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम, याद और दिल की कोमल भाव भावनाओं को दर्शाता है। जब

प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए ये मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और मां बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

नेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है ये, आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म। जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता। हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी, और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद, वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है, तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम, जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती। ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए, आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारी ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वाभिमान से कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है कि आप जिए हजारों साल। ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ का गाया हुआ फिल्म एक नज़र का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज़, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ा उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आर डी बर्मन का।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज एक आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय

फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंगमैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान, महान व्यक्तित्व, ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूं, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूं। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी है, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीजें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय है। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना डॉन फिल्म का गाना।

0: ఆంధ్రప్రదేశ్, జార్ఖండ్, నాగాలాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, ఒడిషా అండ్ వెస్ట్ రాజస్థాన్ టుడే. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरूर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने करने वाली

0: याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
2: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।
3: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए, अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
2: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
4: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
2: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की ही तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक

0: सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का 1-1 नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
1: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: अमरीका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
2: लोगों ने अलर्ट किया है लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहां पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
0: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी, सतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
3: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3,000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।

0: पर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वजापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर

0: शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आपकी परछाइयां इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत प्रतिक्रिया। ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दूर की आवाज़।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार रंगमय कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे मंजू द्विवेदी के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनीता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा, शिवानी चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खानजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष तरुण, दीपेश दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृषिव नारंग। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्र।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिसनेग अकोला से शिवराज भारती, टीना तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती, इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं।

और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से, इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष, रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
2: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
3: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
4: और देख के चलो, तुरी जाना है चलो तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
5: और केड़े पिंडो आया?
4: पता नहीं, तेनू शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
2: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिस्टर शर्मा बाहर ही खड़ी थीं।
6: जो जी, कुछ बात बनी?
3: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
6: क्या कहते हैं?
3: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
6: इसका मतलब?
3: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
6: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला कटी।
7: ये कैसे समझ लिया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
6: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
3: कोशिश करेंगे।
6: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
3: हो सकता है।
6: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
7: अरे तुम तो जानती हो, शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
6: अरे हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
7: ओहो, लेकिन वो
6: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
3: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
8: अरे आइए आइए शर्मा जी।
9: नमस्ते नमस्ते
8: नमस्ते। अरे साहब, धन्यभाग्य हमारे आप हमारे घर पधारे।
9: अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप,
8: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं।
9: आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
8: हाँ, आप बैठिए।
9: हाँ बस मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
8: और सुनाइए।
9: वो बस ऐसा था कि
8: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
9: नहीं,
8: पानी है सोडा?
9: नहीं नहीं, मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता।
8: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
9: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
8: आई डोंट ड्रिंक।
9: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल हुआ क्या कि अचानक
8: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
9: हाँ हाँ,
8: आप इसे अपना ही घर समझ।
9: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझकर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
8: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
9: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
8: हाँ क्या हुआ?
9: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
8: चक्कर? खनखोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
9: हाँ, मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
8: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना है, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
9: फिर आपने क्या किया?
8: बहुत कोशिश की उन्होंने।
9: फिर आपने क्या किया?
8: मैंने
9: हाँ हाँ, आपने क्या किया?
8: मैं ऊपर गया।
9: हाँ
8: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
9: फिर
8: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है।
9: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
8: नहीं।
9: फिर
8: मैं और ऊपर गया।
9: अच्छा, फिर
8: वहां भी न रुके?
9: तो
8: मैं और ऊपर गया।
9: और वहां? हाँ, फिर वहां क्या हुआ?
8: वहां क्या होना था? I don't drink।
9: और वो लोग?
8: वो लोग नहीं माने।
9: फिर आपने क्या किया?
8: करना क्या? कह दिया उनसे।
9: क्या?

0: उनसे, निमंद तो कर लौटना सर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
1: छुट्टी ले ली कितनी?
0: एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
1: लेकिन इतनी लंबी लीव?
0: मेडिकल,
1: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
0: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
1: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
0: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
1: क्या मतलब?
0: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक, बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा लीवर।
1: जिगर जिगर
0: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
1: हाँ, और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
0: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर से के नहीं रुकी है
2: बराबर। हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
3: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
1: तो क्या करूं फिर?
3: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
3: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
3: ओ, जो कोई भी हो उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए।
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
3: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंसकर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर ना चाहते हैं।
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिल आई जाकर सुबह उससे।
1: अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ, लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
1: और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।
1: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ?
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
4: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
5: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी जरूरत डूबती नजर आती है।
4: मौत से पहले मन में कहरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
5: तुम मत लोग होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी की इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
4: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आह पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
5: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
4: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
5: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
4: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
5: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
4: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूँ।
5: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
4: कैसी भूल उषी?
5: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
4: हाँ, तो अब भी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
5: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
4: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी।

0: तुम्हारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जा। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखूं। मैं वचन देता हूं, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
1: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
0: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूं
1: तो
0: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
1: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
0: क्या?
1: हम शादी कर लें।
0: ये कैसे हो सकता है?
1: बारात लाकर, बाजी बजाकर।
0: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
1: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाए, क्या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
3: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
3: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
3: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
4: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
3: घनश्याम जी?
4: ओफो, पिताजी समझा कीजिए। लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
3: जी
4: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो लेकर।
1: नहीं नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर? और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
2: क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
2: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
2: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ।

0: मंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद दो एमपी उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वे दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
0: आपका नाम?
1: एचपी शर्मा।
0: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
0: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
0: मिस्टर शर्मा, अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
2: आइए रतनलाल जी, कहिए।
1: जी, मैं एचपी शर्मा।
2: हाँ, काम बताइए।
1: घनश्याम जी, बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
2: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
2: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
2: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
2: भाई, वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
2: देखो रतनलाल
1: जी, एचपी शर्मा हूँ, एचपी शर्मा। देखिए, 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
2: ठीक है, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लिखकर नहीं लाया हूँ
2: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
1: मैंने सोचा आपसे जबानी।
2: अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: मैं अभी लिख लाता हूँ।
2: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी, सुनती हो?
1: नहीं नहीं, पानी पानी का कष्ट न करें मैं।
2: हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
3: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई। लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही। शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
4: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि
1: आना तो था, बस
4: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
1: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
4: नो नो नो, मैं ये अफसरों अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
1: जी
4: आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
1: जी
4: कॉन्टेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
4: हाँ, बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
4: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना।
4: अरे शर्मा जी, ये कोई खर्चा थोड़ी है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
4: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना, मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
4: हम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप भी सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
4: आई सी। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाऊं?
1: नहीं नहीं, बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
4: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: नमस्कार।
5: नमस्कार।
6: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
6: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
6: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो पर मेरा मन नहीं माना। देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
1: मगर इतना पैसा
6: नहीं तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
7: पिताजी कोई आपसे मिलने आए?
8: अरे भाई जिजमान आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
7: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
6: नक्षत्र बाबा मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ें। ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
8: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
6: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
8: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
1: मैं समझता हूँ महाराज।
8: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे। हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
1: सच बाबा?
8: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
1: 1.5 तोला सोना?
8: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
1: राजवंती 1.5 तोला सोने का दान?
6: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
8: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
1: सच कह रहे हैं आप?
8: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
1: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
9: माजी माजी माजी,
6: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
9: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
6: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
10: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
11: पिताजी ये आपसे मिलने आए थे।
1: ओह, आप क्या
10: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव?
6: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
11: आइए चंद्रकांत जी।
6: देखा आपने आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए।
1: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
6: क्या ब्राह्मण नहीं?
1: सीके यादव है
6: तो क्या ब्राह्मण?
1: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
6: क्या कह रहे हैं आप?
1: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
6: ये क्या कह रहे हैं आप?
1: यही है वो चंद्रकांत यादव यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
6: राम कैसा अंधेर है, अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
9: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
6: आइए आइए, यज्ञ भोज दान दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
11: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
10: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
6: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
10: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
11: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
10: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
11: तो सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
10: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
6: तुम सचमुच आ गए हो?
10: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
1: कहाँ के रहने वाले हो?
10: इंदौर का।
1: और तुम्हारे पिताजी?
10: इंदौर के।
1: और तुम्हारे दादा?
10: दादा, पड़दादा और लकड़दादा सभी इंदौर के।
5: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए।
10: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊंगा।
5: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
6: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते।
10: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
6: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
5: जाने का समय आ गया है बेटा।
12: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
6: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
12: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
10: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
5: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
10: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
5: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
10: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज 4.5 इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
0: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
5: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
3: 22 जून, साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसिर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुमसुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम

0: प्लास्टिक की घास इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस

0: कर रहा हूं मैं, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूं।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर, दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है, आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
5: जी।
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
5: ओ, ये भी तो एक हिस्ट्री है।
0: ये भी एक हिस्ट्री है क्योंकि यहां से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
5: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
0: जी हाँ,
5: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। ये दो गाने जो हैं, साईं बाबा साईंनाथ बोलो, साईं बाबा बोलो, एक एक साईंनाथ तेरे हजारों, ये दोनों गाने जगदीश खन्ना के।
0: ओ हो,
5: नाम नहीं है,
0: नाम नहीं है।

0: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
1: जी जी,
0: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
1: अरे क्या बात है,
0: क्योंकि जगदीश आया था मेरे पास दो गाने अरेंज करने आए, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं दो गाने मुझे अरेंज में तो जैसे दूसरे में जो एक्टर थे तो ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज कर दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।

0: बिल्कुल
1: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली। क्रांति के बाद ही वांटेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
0: जी।
1: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए। तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक्टर लेंगे। तो म्यूजिक्टर कौन? जगदीश।
0: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
1: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
0: ओ
1: म्यूजिक टीचर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए।
0: जी।
1: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
0: मनोज जी ने कहा।
1: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे। तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो। मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह।
0: अच्छा,
1: म्यूजिक एक्टर। मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई। मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का। अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा। तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए, मनोज साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं। मैंने कहा डैडी ऐसी ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
0: मनोज जी का बैनर VIP,
1: राज कपूर VIP, मतलब
0: जी
1: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
0: जी,
1: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं, लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं। जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज, मैंने कहा मनोज जी मैं तो अरेंजर हूं, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। ऐसे ही तुम जगदीश के साथ, जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही। तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैं कहा नहीं नहीं आप बताइए। मतलब देखो म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है, जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं वहां से तुम शुरू कर रहे हो।
0: जी जी।
1: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
0: वाह।
1: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी बोली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया। आप तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
0: ये पिताजी की बात है।
1: पिताजी की बात। तो मैं कहा हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद।
0: जी जी।
1: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ विंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है।
0: हाँ,
1: हाँ वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है।
0: हाँ,
1: राधा जी का और महेंद्र कपूर का।
0: हाँ,
1: उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था।
0: ओहो।
1: हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ। लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।
0: क्या बात है।
1: हम कुछ भी रख ले नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त सिकंदर होता है। ये गाना।

0: इनके दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंटर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
2: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
2: और इसको
0: गाने की शक्ल
2: दी, गीत में गाना देना। कब तलक शम्मा जली,

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने उस वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है, हाँ,
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है, फिर आता है, और फिर इसके अंतरे, और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोज साहब चार शेर है, एक शेर कम करे ना, तुम
1: कुछ हटेगा,
0: लाजवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल
1: थी। कपूर,
0: और फिर देखिए फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रहे हैं, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना,
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो,
1: हाँ
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी।

0: यहां से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है, कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजर्टर होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर्टर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजर्टर हैं, ऐसा गाना, नए मिजर्टर। मिजर्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है, रात को 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला, किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली
0: छाती, जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है। क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना, सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी,
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर बिल्कुल सुनते हैं।

0: एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है उत्तम जगदीश की जोड़ी की, वो है रविंद्र पीपट की फिल्म वारिस।
1: वारिस, यस, ये 1986 की फिल्म है।
0: जी जी
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चंद परदेसी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर, पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज,
0: जी,
1: चंद परदेसी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: तो उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की
1: पूरी
0: फिल्म थी,
1: पंजाबी, हाँ,
0: स्मिता पाटिल और राज बब्बर,
1: राज बब्बर की फिल्म थी वो, और उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि

0: कैमरामैन थे?
1: कैमरामैन थे यस।
0: ये बताइए
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है।
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना रहा था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी लता
1: कल
0: दीदी,
1: हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो, क्योंकि मैं

0: नहीं यार, ये सब आवाजें जो हैं सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
1: फीमेल पार्ट है आपके पास,
0: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है दिन कड़क, और दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मन जी आप गाओगे,
1: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
0: कैमरामैन थे
1: और गायकी शौकिया थी,
0: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक का भी गाना

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊँ इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है।
0: वो आज भी हिस्ट्री है ये गाना,
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है ये गाना,
1: जी
0: सुना जाए इसको।
1: जरूर आप थोड़ा गाएंगे।
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काम करता हूँ इसको, आप जो है वो बजाएगा, मैं लोग आता हूँ।
1: जी ठीक है।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और वारिस हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी।
1: लेकिन

0: मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
1: जी, अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं,
0: जी
1: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है,
0: वो दिल
1: और
0: तो पागल से शुरू होती है।
1: जी दिल तो पागल है से, तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
0: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
1: जी
0: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
1: जी
0: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है, लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है। तो
1: जी
0: मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजीली बन जाएंगे।
1: जी
0: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम इंजॉइंग दैट साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो।
1: जी दोनों काम अब आपको खुद ही
0: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बड़ा
1: जी
0: मजा आया काम करने में। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया, क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही,
1: हाँ
0: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कम्बिनेशन बन रहा था। और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है,
1: जी
0: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है। मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना, ऐसे
1: जी
0: मनोज जी की लिखी हुई है वो।
1: गजब
0: तो मनोज जी ने मुझे, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया, और घर आते ही वो शुरू हो गया।
1: अच्छा
0: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है, ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
1: क्लर्क क्यों, तुमसे जो बात हुई
0: तुमसे जो बात, ये गाना
1: जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना।
0: जी।

सब कुछ खामोश हो जाता है।

0: उत्तम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी, मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। कि जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशियन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
0: जी
1: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा एज ए अरेंजर, काम बढ़ता चले गया।
0: जी,
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने। और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं। और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर ली है तो मतलब ये तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा।
1: बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: जी,
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
0: जी,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चली नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ।
1: और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे।
0: जी,
1: पेंटर बाबू को जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में। बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आरडी बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहां से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
0: कायम रहेगी,
1: मेरे साथ कायम रहेगी, और संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
0: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है।
1: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको।
0: जी,
1: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है।
0: जी,
1: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
0: बिल्कुल,
1: एक चाय वाला करोड़ोंपति बन गया, एक भेल वाला अरबोंपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
0: जी,
1: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का।
0: जी,
1: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया, तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
0: जी,
1: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहां तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
0: हमने तो वायलिन दे दी,
1: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है।
0: जी,
1: अभी गाड़ी को कहां तक ले जाता है? तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
0: क्या बात है,
1: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए।
0: जी,
1: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर में भी एक अवार्ड लता मंगेशकर। तो मेहनत और आपका हाथ का हुनर,
0: जी,
1: ये बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल।

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी उन्हें
0: वो कहानी सुनना
1: चाहिए। बात की बात है, क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके,
0: जी
1: कंवल मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल, बहुत बड़ी फिल्म थी। वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं राइटर कवर जलालाबादी राइटर थे वो बैठे थे हम लोग, तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश

0: बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बिजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
1: अरे अरे अरे,
0: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग वीटिंग वहीं छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
1: अरे बाप रे,
0: और वहीं खत्म हो गए,
1: हार्ट अटैक आया।
0: हार्ट अटैक आया, और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे, तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
1: जी,
0: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
1: अच्छा,
0: मैंने कहा जी ठीक है करते। तो मैं घर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
1: यस यस बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, दूसरा गाना बना तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
1: जी,
0: अंतरे उसने बनाए तो अंतरे मैंने बनाए
1: जी,
0: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया। अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है, तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
1: जी।
0: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा, तो जगदीश का, जगदीश के पहले दो गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने
1: जी, उसमें से दो जगदीश जी के थे,
0: डेढ़ जगदीश का,
1: डेढ़ थे जी हाँ।
0: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
1: जी,
0: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया, उत्तम ये लिख लिया, हो गया। नारायण अग्रवाल का एक गाना है
1: जी, जी।
0: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा ये मेरा है, और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
1: जी जी,
0: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का चौथा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: है वो जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और पेट्रोलियम समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़ी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की विकास यात्रा की चर्चा की और कनेक्टिविटी और ढांचागत संरचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने दुमका की घटना और छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुमका के काठीकुंड में आदिवासी बेटी की मौत बेहद दुखद है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस की कार्यशैली और तंत्र की असंवेदनशीलता की वजह से लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। श्री मरांडी ने दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार को नाबालिग से कथित यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इलाज के दौरान संपर्क में आने के बाद डॉक्टर ने उसे झांसा देकर कई बार यौन शोषण किया। पुलिस ने सिविल सर्जन को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। बोकारो की वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड प्लांट में गैस के संपर्क में आने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। मजदूरों और श्रमिकों ने सेफ्टी को लेकर कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्रा शुरू हो गया। पहले दिन श्रद्धालुओं ने देवी दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। नवरात्रा के पहले दिन रामगढ़ जिले के राजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच भोग वितरित किया गया और भव्य आरती का भी नजारा देखने को मिला। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मोहब्बत में वफा निभाना तो हमने सीखा, मगर जफा करना ना आया। किसी की खातिर दिल को तड़पाना, किसी की आंखों में अश्क लाना हमारी फितरत नहीं। इश्क में शिकवे भी मिले, फासले भी आए, मगर दिल ने हर बार उसी शख्स की खैरियत

इश्क वो नहीं जो महज लफ्जों में बयान हो जाए, इश्क तो वो है जो खामोशी में भी पूरी दास्तान कह जाए। वो मेरी मोहब्बत बनकर मेरी रूह में समाती गई, उसकी एक झलक को तरसती निगाहें, उसकी एक आवाज पे ठहरती धड़कनें। ये कैसी आरजू है, ये कैसी कैफियत है कि उसका नाम आते ही दिल को जैसे इबादत का एहसास होने लगा। मेरे में

अंतराल के बाद इस दीवाने की महफिल में हम और आप साथ साथ छाया गीत के सफर में। उसकी मोहब्बत क्या रंग लाई, उसे देखने की आरजू, उसे चाहने में खुशी, उसके साथ में जैसे पूरी कायनात मिल गई। उसे देखा तो लगा बहारों ने कोई ख्वाब देखा है, जैसे गुलिस्ता में अचानक किसी गुल ने मुस्कुराकर अपनी खुशबू बिखेर दी हो।

इश्क में आशिक की बेचैनी यही तो होती है, महबूब नजर से ओझल हो जाए तो दिल उसे हर गली, हर राह, हर फिजा में तलाश करने लगता है। यही तो मैंने भी किया, कभी हवाओं से, कभी घटाओं से, तो कभी चांद से पूछता, क्या तुमने उसे देखा है। नजर उसकी तलाश में भटकती रही और जब महबूब को एक नजर देख लिया तो मत पूछिए दिल का हाल।

महबूब से मिलने की खुशी कभी अपना एक आलम है, लबों पर खामोशी, आंखों में ख्वाब और दिल में बेपनाह मोहब्बत, बस एक दीदार की चाहत में ये दीवाना सफर पर चल पड़ा।

0: भरे इन रस्तों के हर मोड़ पे ये।
1: अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए एक नज़र डालते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

शाम 5:30 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम सुनेंगे युवानी। युवानी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी स्वरोजगार अपनाएं और भविष्य को संवारें। साथ ही चर्चा में आप सुनेंगे पूजा पंडालों में साफ सफाई आवश्यक। वार्ता में सुनेंगे विटामिन सी के स्रोत। वार्ताकार होंगे वेद पांडे। 6 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम में आज चर्चा होगी धान फसल में कीट प्रबंधन और साथ ही चर्चा में सुनेंगे अंतर्वर्ती खेतों से अनेकों लाभ। भेंटवार्ता में सुनेंगे एक केचुआ पालक से ली गई भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार होंगे जोरकट पलामू से सुरेश प्रजापति और भेंटकर्ता होंगे संतोष कुमार। 6:30 समय होगा महिलाओं के लिए कार्यक्रम जननी का। जननी कार्यक्रम में आज चर्चा होगी महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ, इस पर जानकारी दी जाएगी। वार्ता में सुनेंगे बालिका शिक्षा। वार्ताकार होंगी पूजा गुप्ता।

सात बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 7:10 पर जिले में आज कल आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 7:15 पर गीत गजलों का कार्यक्रम सुनेंगे स्वरांजलि। स्वरांजलि कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी आबिदा। 7:45 पर लोकगीतों का कार्यक्रम सुनेंगे महुआ कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे भरत सिंह भारती एवं साथियों के स्वर में सुनेंगे कुछ लोकगीत। 8:00 का समय होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे गीत संगीत। आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

रात्रि के 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में खबरें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आज के फनकार सुन सकेंगे विविध भारती से। 10:00 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का और 10:30 पर एक रंग में सुनेंगे एक ही फनकार। 11:00 का समय होगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का, जिसे आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। हमेशा की तरह हम अपने सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। तो ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

युवानी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम युवा साथियों को सुनीता का नमस्कार, साथ ही नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, शारदीय नवरात्रि का आज से प्रारंभ हो चुका है और आज से शुरू होने वाला ये पर्व का महत्व हम सबों के जीवन में काफ़ी महत्व है इसका। और इस पर्व को हम पर्व नहीं बल्कि महापर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्व है देश के लगभग हर प्रांतों में मनाया जाता है पूरे धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ। 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व हमें बहुत कुछ सिखाती है, संदेश देती है। वैसे तो हमारा देश पर्वों का देश भी कहा जाता है। हर पर्व मनाने के पीछे कुछ न कुछ संदेश अवश्य होते हैं, जिससे हमें अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए और उनका अनुसरण करनी चाहिए। दुर्गा पूजा मनाने के पीछे भी अनेक ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कथाएं हैं। श्रोताओं, पर्व त्योहार जरूर हमारे जीवन में उत्साह एवं उमंग से भर देते हैं, साथ ही जरूर इसमें भाग लेनी चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि पर्व जो है निश्चय ही इसके मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि ये हमें अपने सभ्यता संस्कृति से बांधे रखती है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। और पूरे हर्षोल्लास के साथ भी इसमें जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। और लोगों को इंतज़ार भी होता है कि कब जो है पर्व आए हमारे जीवन में और हम उसका हिस्सा बने। लेकिन दोस्तों, पर्व त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी होते हैं हमारे साथ। अब देखिए कि लोग पर्व जो साज सज्जा होती है पंडालों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और देखने जाते हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्रतिमा का स्थापित होती हैं और इतने साजो सज्जा की जाती हैं तो ज़रूर उसका आनंद लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद उस जूठे बर्तन को या जो भी पत्तल है या कागज़ जो भी दोने हैं उसे अपने आसपास सड़कों पर बिखेर देते हैं। तो जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं माता रानी का, उस स्थान को यदि हम गंदा करते हैं तो ये शोभनीय एक सभ्य नागरिक का ये जो है सभ्य नागरिक के लिए ये कार्य नहीं हो सकता कि हम अपने आसपास जहाँ पूजा हो रही है, पूजा का स्थल मतलब जहाँ पे पवित्रता हो स्वच्छता हो, और उस स्थान को हम यदि गंदा करते हैं बिखेरते हैं तो सचमुच में ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, क्योंकि हम अपने आसपास सड़कों पर ये जूठे बर्तनों को बिखेर कर न सिर्फ पर्यावरण को दूषित करते हैं बल्कि आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये मुश्किल हो जाती है कि उस चलने में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस बात को समझनी चाहिए कि हम अपने आसपास गंदगी को बिखेरने के बजाय उसमें साफ सुथरा उसे रखने की हम पूरी कोशिश करें।

इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें चाहिए कि जो पास में कूड़ेदान होते हैं हम उसका प्रयोग जरूर करें, और जो भी जो हमारे पास प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो बचते हैं पत्तल या दोना, उसी में डस्टबिन में उसे डालें। हम इतना करके भी काफ़ी हद तक अपने आसपास को स्वच्छ रख सकते हैं और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए जो पूजा पंडालों के जो संस्थाओं के जो संस्थापक होते हैं उन्हें भी चाहिए कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के जो प्लेट होते हैं उनके अंबार लग जाते हैं, तो उन्हें ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जो पूरी तरह से वो डिस्पोजल हो, यानी आसानी से वे सड़ गल के मिट्टी में मिल जाए, यानी पत्तल से बनी होनी चाहिए, कागजों की बनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा का मतलब ये नहीं है कि आसपास गंदगी फैलाना और कचरे का ढेर लगाना। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल जरूर रखें और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि हम अपने आसपास के स्थान को, अपने शहर को, अपने शहर को और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी पूरी पूरी भागीदारी दें, ताकि जो पूजा है वो और भी उसे आनंदपूर्वक मनाया जा सके। तो दोस्तों, इस जानकारी के बाद चलिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के बाद श्रोताओं चलिए अब थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के कौन कौन से स्रोत हैं और ये क्यों आवश्यक है हम सबों के लिए, तो इस पर जानकारी देंगी वेद पांडे।
1: सभी भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को आवश्यकता होती। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। इस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। विटामिन के विभिन्न प्रकार हैं, उसी में से एक विटामिन सी है। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल मानव एवं विभिन्न अन्य पशु प्रजातियों के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये विटामिन रूप में कार्य करता है।

कई बार की उपापचयी अभिक्रियाओं हेतु एस्कॉर्बेट सभी पादपों व पशुओं में आवश्यक होता है। ये लगभग सभी जीवों द्वारा आंतरिक प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है, सिवाय कुछ विशेष प्रजातियों को जिनमें स्तनपायी समूह जैसे चमगादड़ एंथोपोइडिया आते हैं। इसका निर्माण गिनी सुकर एवं पक्षियों एवं मछलियों की कुछ प्रजातियों में नहीं होता है। जो भी प्रजातियां इसका निर्माण आंतरिक रूप से नहीं कर पाती उन्हें ये आहार रूप में वंचित होता है। इस विटामिन की कमी से मानवों में एस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसे व्यापक रूप से खाद्य रूप में प्रयोग किया जाता है। विटामिन सी के गुण। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकी का निर्माण और उन्हें सहयोग करता है। शरीर में विटामिन सी कई तरह की रासायनिक क्रियाओं में सहायक होता है, जैसे कि तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करना आदि। इसके अलावा हड्डियों को जोड़ने वाला कोलाजेन नामक पदार्थ, रक्त वाहिकाएँ, लाइगामेंट्स, कार्टिलेज आदि अंगों को भी अपने निर्माण के लिए विटामिन सी वंचित होता है। यही विटामिन कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा लौह तत्वों को भी विटामिन सी के माध्यम से ही आधार मिलता है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। ये शरीर की कोशिकाओं को बांध के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंग को आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर की रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसके एंटी हिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में औषधि रूप में काम करता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत मसूड़ों में ढील हो सकते हैं या निकल सकते हैं, चर्म में चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रुखरा हो सकता है। इसकी कमी के कारण भूख भी कम लगती है व बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी हो सकता है। ये विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये मानव शरीर के वृद्ध होने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अमेरिकी पत्रिका रेजुवेनेशन रिसर्च के हाल के संस्करण में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार रक्त प्लाज्मा के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल स्तर को बनाए रखने पर केंद्रित मानव शरीर के रक्षात्मक तंत्र का उल्लेख किया गया है। AFR और PMRS एंजाइम कोशिका के भीतर से वह कोशिका के बाहर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा जिससे रक्त में एस्कॉर्बिक अम्ल के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। जब तक दो एंजाइमों को बढ़ाने वाली दवा उपलब्ध नहीं होती तब तक मानव भोजन के विटामिन सी की प्रचुर मात्रा के साथ बुढ़ापे की प्रक्रिया के खिलाफ संघर्ष कर सक रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एस्कॉर्बिक अम्ल का स्तर व्यक्ति की आयु बढ़ने होने के साथ कम होता रहता है। आवश्यकता। मनुष्य को विटामिन सी अलग से खाद्य पदार्थों के साथ ग्रहण करना होता है क्योंकि शरीर इसका स्वयं निर्माण नहीं करता। ये फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है, जैसे लाल मिर्च, संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और आलू आदि। यह घुलनशील तत्व होता है, इसलिए कच्चे फल और सब्जियां इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति 80 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। सेब के रस से भी यह प्राप्त होता है, लेकिन इसके अलग तत्वों की मदद से भी ग्रहण किया जा सकता है। अत्यधिक विटामिन सी भी हानिकारक हो सकता है। किसी भी स्थिति में एक दिन में विटामिन सी 1000 मिलीग्राम से अधिक नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे अधिक वह शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे, हृदय और अन्य जगह में एक प्रकार की पथरी हो सकती है। यह ऑक्जेलेट क्रिस्टल का बना होता है। इस पथरी के कारण मूत्र विसर्जन में जलन या दर्द हो सकता है या फिर पेट खराब होने से दस्त हो सकता है। अभाव। विटामिन सी के अभाव में शरीर में दूषित कीटाणुओं की वृद्धि हो सकती है। इसके कारण आँखों में मोतियाबिंद, खाया हुआ खाना शरीर में पोषण नहीं कर पाना व घाव में मवाद बढ़ना, हड्डियाँ कमजोर होना, चिड़चिड़ा स्वभाव, खून का बहना, मसूड़ों से खून एवं मवाद बहना, भूख न लगना, चर्म रोग, गर्भपात। इनके अलावा अल्सर का फोड़ा, चेहरे पर दाग पड़ जाना, फेफड़े कमजोर पड़ जाना, जुकाम होना, आँख कान व नाक के रोग, एलर्जी होना इत्यादि होने की संभावना रहती है। विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी पानी में घुलनशील है, इसलिए यह शरीर में न्यूनतम मात्रा में जमा हो जाता है। इसलिए विटामिन सी के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए आपको अपने आहार में विभिन्न फलों और सब्जियों को शामिल करना होगा। जब आहार पूरकता अपर्याप्त होती है तो विटामिन सी पूरकता पर विचार किया जा सकता है। विटामिन सी से भरपूर फल, सब्जियाँ और जूस जैसे

0: आंवला। यह फल विटामिन सी भरपूर होता है। दरअसल आंवले को विटामिन सी का भंडार कहते हैं, क्योंकि एक मध्यम आकार के आंवले से लगभग 600 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। टमाटर। किचन की लगभग आधी से ज़्यादा डिशेज में इस्तेमाल होने वाले टमाटर में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। एक मीडियम साइज टमाटर से आपको लगभग 17 मिलीग्राम तक विटामिन सी मिल सकता है। टमाटर को करी के अलावा सलाद, चाट और सूप की मदद से भी अधिक मात्रा में खाया जा सकता है, जिससे आपकी विटामिन सी की रोज़ाना ज़रूरत पूरी होती रहे। ब्रोकली। हरी ताजी ब्रोकली न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि यह कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है। ब्रोकली खाने से फोलेट, आयरन, विटामिन सी प्राप्त होता है। 100 ग्राम ब्रोकली से लगभग 51 मिलीग्राम विटामिन सी प्राप्त होता है। आलू। इंडियन कुकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सबके पसंदीदा आलू में पोटेशियम की मात्रा हाई होती है, कमजोरी की समस्या को दूर रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू में विटामिन सी की मात्रा भी अधिक होती है? जी हाँ, एक मध्यम आकार या मीडियम साइज आलू से आपको लगभग 17 मिलीग्राम तक विटामिन सी मिलता है। नींबू। यह विटामिन सी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है। नींबू एनीमिया, हृदय रोग और कैंसर के जोखिम में मदद कर सकता है। अमरूद। गुलाबी रंग के इस फल में 126 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। कीवी फ्रूट। विटामिन सी भरी हुई कीवी तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह 137 ग्राम विटामिन सी प्रदान करता है, जो संतरे से लगभग दोगुना मात्रा में होता है। नारंगी। संतरा आहार विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इसमें विशेष रूप से त्वचा कैंसर के खिलाफ विरोधी भड़काऊ और कैंसर विरोधी गुण होते हैं। अंगूर और अंगूर का रस। यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी का जूस। इसमें विटामिन सी, मैग्नीज, फोलेट और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का शक्तिशाली मिश्रण होता है। स्ट्रॉबेरी मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग आदि रोकने में मदद कर सकती है। विटामिन सी की खुराक। वैज्ञानिक डेटा ने प्रस्तावित किया कि विटामिन सी की आवश्यकता हो सकती है जब आपके शरीर को विटामिन सी की सामान्य मात्रा नहीं मिलती है। इसे मौखिक रूप से या अंतःशिरा में पूरक किया जा सकता है जब उच्च खुराक की आवश्यकता होती है, जैसे स्कर्वी। विशेषज्ञ का सुझाव है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन और फेविपिरविर के साथ साथ कोविड 19 संक्रमण के उपचार के लिए विटामिन सी का एक अंतःशिरा जल से उपयोगी हो सकता है। धन्यवाद।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वार्ता विटामिन सी के स्रोत और उससे होने वाले लाभ। भेंट वार्ता, वार्ताकार थे बेद पांडे। और चलिए श्रोताओं, इसके बाद हम सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। श्री मरांडी ने दुमका की घटना और छात्राओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुमका के काठीकुंड में आदिवासी बेटी की मौत बेहद दुखद है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस की कार्यशैली और तंत्र की

0: असंवेदनशीलता की वजह से लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। श्री मरांडी ने दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर सजा देने की मांग की। हटिया मजदूर यूनियन ने रांची नगर निगम में 15 अक्टूबर से हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा, हड़ताल में करीब 2000 सफाईकर्मी शामिल होंगे। खेलगांव स्थित ट्रिपल आईटी के छात्रावास में प्रथम वर्ष के छात्र आदित्य कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद आज संस्थान परिसर में जमकर हंगामा हुआ। छात्र की मौत से नाराज विद्यार्थियों ने संस्थान के प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। छात्रों ने निदेशक और एकेडमिक डीन के इस्तीफे की मांग को लेकर धरना भी दिया। गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र में पारसनाथ पर्वत की तराई में जिरवा बेड़ा जंगल से 5 किलोग्राम का केन बम, कोडेक वायर और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नक्सली हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक छिपाकर रखे थे। कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया। पहले दिन श्रद्धालुओं ने देवी दुर्गा के शैल पुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्रामीण सभा।

ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार और साथ ही नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, पर्व त्यौहार से पूरा वातावरण ही हर्षोल्लास और खुशियों से भर जाता है। एक तरफ पर्व त्यौहार की खुशियां एवं दूसरी तरफ खेतों में लहलहाते धान की फसल, निश्चय ही हमारे किसान भाइयों के लिए ये खुशियों से भरा पल होता है, क्योंकि पूरे वर्ष भर की मुख्य फसल होती है धानी फसल। और जब धान फसल अच्छी होती है ना, तो फिर उनके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशियां ही खुशियां होती हैं। अभी धान फसलें जो फसल है श्रोताओं, हम खेतों में देख रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, लहलहा रहे हैं और उनमें कल्ले भी निकल आए हैं। लेकिन इसी तरह ये धान फसल लहलहाते रहे और हमारे किसान भाइयों का जो खेत खलिहान है, भंडार है, वो अनों से भरा रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई थोड़ी मेहनत करें, यानी कि वे सचेत रहें और समय समय पर अपने खेतों के निरीक्षण करते रहें, क्योंकि धान फसल में कीट एवं रोग भी लग सकते हैं। और यदि इनका आक्रमण होता है फसलों पर, तो फिर उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। तो किसान भाइयों, धान जो है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल है और धान की अच्छी पैदावार के लिए केवल समय पर सिंचाई और खाद देना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि धान फसल में लगने वाले कीट और रोगों की समय पर पहचान करना और उचित प्रबंध करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं उनमें लगने वाले कीटों की। तो तना छेदक जो कीट है, इस कीट की सुंडी धान के तने में घुस कर अंदर से धान फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआती अवस्था में पौधे के बीज की जो पत्तियां सूखकर डेड हार्ट जैसी दिखाई देती हैं, बालियां निकलने के बाद प्रभावित बालियां सफ़ेद होकर सूख जाती हैं, जिसे कि सफ़ेद बालियां भी कहा जाता है। इसके

नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने खेतों की निगरानी करते रहें, अंडों के समूह दिखाई देने पर उन्हें नष्ट कर दें, संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करें और अधिक प्रकोप होने पर आप अपने आसपास के जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका सलाह लें और उसके अनुसार ही उसमें दवाओं का प्रयोग करें। उसी प्रकार से पत्ती लपेटक कीट भी होते हैं और इनकी जो सुंडी होती है पत्तों को मोड़कर उसके अंदर रहती हैं और हरे भाग को खा जाती हैं। पत्तियों पर सफ़ेद धारियां या खुरचे हुए हिस्से दिखाई दे सकते हैं। इससे नियंत्रण पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे नियमित रूप से खेत की जांच पड़ताल करते रहे, अनावश्यक नाइट्रोजन के छिड़काव से बचें, ज़रूरत पड़ने पर ही आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें और समय समय पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते रहें आवश्यकता पड़ने पर। उसी प्रकार से भूरा माहू कीट भी होता है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। भूरा माहू पौधे के तने से रस चूसता है, अधिक प्रकोप होने पर पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और खेत में हार्पर बर्न जैसे दिखाई देने लगते हैं। इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में अनावश्यक रूप से पानी भरा न रखें और नाइट्रोजन की अधिक मात्रा न डालें। खेतों में मकड़ियों जैसे प्राकृतिक शत्रुओं की रक्षा करें और प्रकोप होने पर आप अपने आसपास के कृषि विशेषज्ञ का सलाह लें और उनके बताए हुए कीटनाशी का प्रयोग करें। उसी प्रकार से हम यदि देखते हैं तो धान में लगने वाले कुछ प्रमुख रोग भी होते हैं, जैसे कि झुलसा रोग। ये बहुत ही जो है ये धान में लगने वाले प्रमुख रोग होता है और पत्तियों पर आँख या नौ के आकार के धब्बे बनने लगते हैं जो बढ़कर पत्ती को सुखा सकते हैं। अधिक प्रकोप होने पर बालियों पर भी इसका असर पड़ता है और हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि समय रहते इस पर नियंत्रण कर लें। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। जब भी आप बुआई करते हैं तो ध्यान रहे स्वस्थ एवं उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करें। संतुलित पोषण दें आवश्यकता अनुसार धान फसल में। खेत में उचित दूरी अवश्य बनाए रखें और आवश्यकता के अनुसार फफूंदनाशक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से होते हैं शीत ब्लाइट। यह रोग पौधे की पत्ती की म्यान पर पानी से भीगे हुए हरे भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे फैलते हैं और पौधे की पत्तियाँ इनसे प्रभावित हो जाती है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे खेत में अत्यधिक नमी नहीं होनी चाहिए, साथ ही खेतों में अधिक घनी फसल भी नहीं होनी चाहिए। संतुलित मात्रा में खाद दें और रोग दिखाई देने पर फफूंदनाशी दवा का प्रयोग तब करें जब आवश्यकता हो। उसी प्रकार से देखा जाता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसमें जो है पत्तियों के किनारों से पीले या पानी जैसे धब्बे शुरू होकर धीरे धीरे पूरी पत्ती को सुखा सकते हैं और इस प्रकार से पौधे जो हैं वो देखते देखते पीले पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि खेत में उचित जल प्रबंधन रखें, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, अत्यधिक नाइट्रोजन के छिड़काव से बचें, साथ ही रोगग्रस्त खेत से बीज ना लाएं, यानी जहां इस प्रकार के रोग हो सकते हैं खेतों में वहां के बीज का प्रयोग ना करें और ज़रूरत पड़ने पर दवाओं का छिड़काव करें। खैरा रोग ये भी बहुत ही खेतों में धान की फसलों में देखा जाने वाला बहुत ही ये कॉमन रोग है और धान की पत्तियों पर पीले भूरे रंग के धब्बे जैसे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं और पौधे की बढ़वार जो है वो भी प्रभावित होती है। और इसमें श्रोताओं देखा जाए तो जिंक की कमी से भी ये जो रोग होते हैं खैरा रोग वे हो सकते हैं। तो अपने खेतों के मिट्टी के परीक्षण के आधार पर यदि जिंक की कमी हो तो आप उसे पूरा करें, जिंक उर्वरक का प्रयोग करें और अपने समय समय पर खेतों की मिट्टी की जांच

0: कुछ भी करवाते रहें। हमारे किसान भाइयों को दवा का छिड़काव करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दवा का छिड़काव जब भी करें तो शाम में करें, और छिड़काव की जो दवा की मात्रा है वो भी सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी जितने निर्देश दिए गए हैं उस दवा के ऊपर जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पूरा पूरा पालन करना चाहिए, और उसका अनुसार ही दवा की मात्रा होनी चाहिए, समय होनी चाहिए, और उसमें कब डालनी है, कितने दिनों में डालनी है, इन सबों की पूरी जानकारी उन्हें ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि अधिक या कम मात्रा में दवा का छिड़काव करने पर भी फसलों को नुकसान हो सकता है। तो हमारे किसान भाई इन बातों का ध्यान दें और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही दवाओं का छिड़काव करें और अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें ताकि समय पर पता चल सके और समय पर ही आप उन पर नियंत्रण कर सकें। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते एक भेंट वार्ता। एक केचुआ पालक से ली गई भेंट वार्ता है जिसमें भेंट वार्ताकार है जोरकट पलामू से सुरेश प्रजापति, और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार।
1: किसान भाइयों, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का नमस्कार। किसान भाई बहन, आज हम बातें करेंगे एक सफल केचुआ पालक सुरेश प्रजापति से। आप हैं डाल्टनगंज प्रखंड के जोरकट गांव के एक सफल किसान। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं केचुआ खाद का उत्पादन आज 12 वर्षों से कर रहा हूं, और किसान को मैं बताता भी हूं कि आप लोग भी इस तरह से विकास कीजिए जिससे कि आपका खेतों की उर्वरा शक्ति बना हुआ रहेगा और पौधा का औषधीय गुण हो, चाहे कोई भी पौधा हो उसका गुण बरकरार रहेगा, जो आपका शरीर के विकास के लिए मानसिक हो चाहे बौद्धिक अच्छा रहता है। तो मैं बता रहा हूँ केचुआ खाद आप लोग बनाइए, एक बहुत अच्छा चीज है। केचुआ जमीन में रहता है। अब जहाँ तक ले बात है परिचय का, पहले कि आप लोग को बता दे रहा हूँ कि संसार में केचुआ 3,500 प्रजाति से भी ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे उत्तम झारखंड में आइसिना फोटोडा है।
1: अभी आपने क्या पाला है?
2: अभी हमने आइसिना फोटोडा को पाले हैं, जो गुलाबी कलर का होता है, जो 3 इंच तक लंबा होता है और वो भागता नहीं है, रात्रि को जो है सो कंपोस्ट बनाता है, दिन को सोया हुआ रहता है।
1: अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं केचुआ खाद जो आप तैयार करते हैं, शुरुआती कैसे करते हैं आप?
2: शुरुआती किसान को जैसे मैं किया था उस तरह से बता दे रहा हूँ कि पहले प्लास्टिक पर जो है से गोबर पत्ता को अधसड़ा जो होता है उसको डाल दिया, उसी में केचुआ को छोड़ दिया, और धीरे धीरे अभी जो मेरा आज 12 वर्षों से है तो अब मैं टंकी बना लिया हूँ जो कि 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ऊंचा है, जो एक तरफ से ढलान है और नीचे पक्का का फर्श किया हुआ है जो कि पना किया हुआ है, जो कि पानी बहता है तो एक साइड में निकलता है, जो पानी ये केचुआ खाद से निकलेगा वो बर्मी वाश कहलाता है, वो 20 रुपये लीटर का हिसाब है, सेल होता है और खेत में भी डालते हैं। तो नीचे पहले जो है सो पक्का का फर्श ढलान हो गया और उसके ऊपर जो है सो आपका बांस बिछा देते हैं, बांस बिछाने के बाद उस पर पत्ता डाल देते हैं। बांस इसलिए बिछाया जाता है कि निचला सतह जाम न हो, जो कि पानी निकलने में बर्मीवास कठिनाई न हो, इसलिए डालते हैं कि बांस डाल दिए और उस पर पत्ता डाल दिए। अब पत्ता डालते हैं 6 इंच तक, उसके बाद जो है सो उसमें जो है सो गोबर डाल देते हैं।
1: अच्छा।
2: गोबर डाल देते हैं जो कि 15 दिन का ठंडाया हुआ गोबर हो, जिसमें गर्मी न हो, और नहीं तो केचुआ मर जाएगा भफा के।
1: अच्छा।
2: इसलिए गोबर डाल देते हैं। गोबर डालने के बाद फिर जो है सो पत्ता डाल दिए और सब्जी का काटन छाटन जो अधसाड़ा होता है जो कि हम लोग डाल देते हैं जमीन में, जो कि अधसाड़ा हो जाता है दे देते हैं। दूसरा चीज कि जल्दी से नहीं सड़ता है।

0: ये सब्जी के काटन छाटन ये सब, तो उसको एक जैसे सुगा को पिंजरा के टब में रखते हैं ना गोला, तो उसी प्रकार से हम जो है सो चूहा को रखते हैं।
1: अच्छा।
0: जो 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा रहता है और उसमें जाली नुमा छेद होता है ईटा वाला में, जो कि चूहा उस में जो टब में डालते हैं पात पत्तर गोबर ये सब, वो सभी को कुरकुट करके नीचे गिराता है।
1: अच्छा।
0: और पुनः उसको हम जो है सो केचुआ टंकी में डालते हैं, जिससे कि केचुआ जल्दी से खा लेता है और बर्मी कंपोस्ट बना देता है। अब बर्मी कंपोस्ट हम लोग कहते हैं जो केचुआ द्वारा बिष्ठा छोड़ता है ना, यानी जो उत्सर्जित पदार्थ उसका है, उसी को जो है सो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो कि उखाद का काम हुआ।
1: अच्छा, वर्मी वाष्प क्या है?
0: वर्मी वाष्प आपका जो केचुआ के खाए हुए जो बिष्ठा होता है उसमें पानी जो डालते हैं, तो उसमें पत्ता का रस, बिष्ठा का रस, गोबर का रस जो निकलता है वो वर्मी वाष्प तेज खाद होता है। उसको पौधा में स्प्रे भी किया जाता है और पौधा जब कोड़ के जड़ तर दिया भी जाता है, पौधा के गोलाई से थोड़ा हट के 6-6 इंची, और जड़ तर दे देने के बाद पौधा डायरेक्ट जो है सो जल भी सकता है। तो पौधा हम देखते हैं कि जमीन में कितना ताकत है, कहीं 3 गुना, कहीं 4 गुना, कहीं 5 गुना पानी में मिला के देते हैं कि पौधा इतना ये पौधा सेट किया, तो उसी प्रकार से उसको देते हैं, यही बर्मी वास हो गया। तो इस तरह से बर्मी वास, बर्मी कंपोस्ट मेरा बन जाता है। अच्छा, बर्मी कंपोस्ट बनने के लिए इस तरह से हम लेयर पर लेयर डालते हैं, गोबर डाले, पात पत्ता डाले, सब्जी का काटन डाले, और लास्ट जब ऊपर आ जाता है 5-6 तक, उसमें परत में केचुआ भी डाल देते हैं। केचुआ 1 स्क्वायर फीट में 40 केचुआ होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: अगर उतना केचुआ डालते हैं तो वो जो है सो 2.5 महीना में खाद मेरा तैयार हो जाता है। तो केचुआ खाद बनाने के लिए तह तह डालने के बाद जब ऊपरी सतह में आ जाते हैं तो जूट के बोरी से ढक देते हैं, और ऊपर में तो छाया रहता है। अगर जूट का बोरी नहीं है तो किसान बंधु आप लोग पत्ता से भी ढक सकते हैं, जो कि नमी को बनाए रखे। तो इस तरह से जब देखते हैं कि भूरभूरा हो जाता है पत्ता गोबर, तो उसको जो है सो 2.5 महीना के बाद पानी देना बंद कर देते हैं। समय समय पर यही देखते हैं कोड़ कोड़ के कि कहाँ पर गर्मी है, ठंडा है, और नहीं तो केचुआ मर जाएगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इसी तरह से एकदम सस्ता काम आप लोग भी कीजिए और आपका विकास होगा।
1: आप कहाँ से लाते हैं ये केचुआ, कहाँ से लाते हैं?
0: केचुआ रामकृष्ण मिशन रांची से लाए थे केचुआ, जो कि आज मेरे पास लाखों केचुआ हो चुका है, और हर समय केचुआ भी बेचते हैं, बर्मी वास भी बेचते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, और अपना खेती भी करते हैं।
1: आप औषधीय पौधों की भी खेती करते हैं?
0: जी हाँ, ये केचुआ खाद से, केचुआ खाद से खासकर मेरा औषधीय पौधा के गुण बरकरार रहता है, जो कि हमको खाने में स्वादिष्ट लगता है। अगर हम किसी को केचुआ खाद से अगर पत्थर चूर अपनाए हैं, तो उसे लोगों को मैं पौधा दे देता हूं, जो कि पत्ता से पथरी उसका ठीक हो जाता है, तो किसान को 10 से 20 हजार की बचत हो जाता है। अगर ज्यादा पथरी हो गया है, ऑपरेशन कराने लायक है, तभी ऑपरेशन कराएं, और नहीं तो छोटा मोटा रहता है तो ठीक हो जाता है। किसान बंधु हमारा इसे लाभ लेते रहते हैं। इसी प्रकार से आपका किसी को अगर गैस हो गया है तो बर्मी कंपोस्ट डालिए औषधीय पौधा में, खासकर एलोवेरा में, तो उससे किसान को राहत मिलता है, चाहे जो रोगी हो तो उनको भी लाभ मिल जाता है। मैं ये संत विचार की भावना से बता रहा हूँ कि इसी तरह से सेवा कीजिए, लोगों को बताइए। और किसी का अगर बौसीर हो गया है तो उसमें भी 1-2 पौधा है, जैसे कि हल्दी हो गया है ना, तो हल्दी भी उसको दे सकते हैं खाली पेटे, जो कि ठीक कर देता है। बहुत से लोग आ जाते हैं

0: कोई शुगर पेशेंट भी आ जाते हैं तो उनको भी जो है स्टीविया ये सब दे के बताते हैं कि इसे लाभ लीजिए और चीनी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आपको मीठा लगेगा लेकिन शुगर असर नहीं करेगा बल्कि कुछ कंट्रोल रहेगा।
1: केचुआ खाद से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें आपने की सुरेश प्रजापति, आप हमारे किसान वाणी कार्यक्रम से जुड़े, इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, एक केचुआ पालक से बातचीत, भेंट वार्ता करते सुरेश प्रजापति और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। चलिए श्रोता अब हम बातें करते हैं अंतर्वर्ती खेती के लाभ क्या क्या हैं और हमारे किसान भाई इसका किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं अंतर्वर्ती खेती के अनेकों फायदे हैं। अंतर्वर्ती खेती यानी कि एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित पंक्ति व्यवस्था के अनुसार उगाना और उसकी खेती करना, जैसे कि उदाहरण के लिए मक्का के साथ अरहर, सोयाबीन के साथ मक्का या गेहूं, साथ ही सरसों जैसी फसलों को उचित दूरी पर उचित अनुपात में उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई अपने खेतों में एक साथ दो या तीन फसल लगा सकते हैं। अंतर्वर्ती खेती के जो लाभ है श्रोताओं, उससे हमारे किसान भाइयों को उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि एक ही खेत से एक से अधिक फसलें प्राप्त होती हैं तो इससे खेत की उपलब्ध जगह, भूमि, पानी और पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग हो पाता है और सिर्फ बेहतर उपयोग ही नहीं होता बल्कि उत्पादन में भी वृद्धि होती है और इसे बेचकर हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। तो एक ही फसल पर निर्भर रहने की बजाय हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अपने खेतों में वे मौसम के अनुसार वे अपने खेतों में एक से अधिक उत्पादन लें, ताकि मौसम की मार हो या कीट का प्रकोप हो तो उसे होने वाले नुकसान से वे बच सकते हैं। यानी यदि एक फसल पे उन्हें नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरे या तीसरे फसलों से हो जाती है, तो इस प्रकार से उन्हें जो है जोखिम कम हो जाता है। भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता है। अलग अलग फसलों की जड़ें अलग अलग गहराई तक जाती हैं और उनकी पोषक तत्व जो है वो भी अलग अलग होती हैं, इसलिए खेत के संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन हो पाता है और इस प्रकार से जो है अधिक से अधिक उत्पादन भी प्राप्त हो जाता है। यदि हमारे किसान भाई अपने खेतों में अंतर्वर्ती खेती में दलहनी फसलें का प्रयोग करते हैं जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द, तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सहायक होते हैं और इससे उचित फसल संयोजन में सहायता मिलती है। यानी कि यदि हमारे किसान भाई दलहनी फसलें लगाते हैं तो इसका लाभ उन्हें जो अगली फसल होगी, अगली फसल भी लगाएंगे उसमें इसका लाभ देखा जाता है, उसकी बेहतरी अच्छे ढंग से होती है, नाइट्रोजन का प्रयोग कम करना पड़ता है। और इतना ही नहीं श्रोताओं, मिट्टी के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता मिलती है श्रोताओं। यदि दो फसलों को लगाया जाता है खेत में तो इससे क्या होता है कि खेत की जो ज़मीन है वो ढक जाती है और जिससे खरपतवार को पनपने का उन्हें पूरा मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनमें जो है प्रकाश नहीं मिल पाती, हवा नहीं मिल पाती। इस प्रकार वे जब उन्हें प्रकाश, हवा इत्यादि ढंग से नहीं मिल पाती है तो उन्हें पनपने का पूरा मौका नहीं मिलता है और इस प्रकार से खरपतवार पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। फसल का अधिक जो है भूमि आवरण होने से वर्षा की बूंदों का सीधा प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है और मिट्टी के कटाव को भी रोकने में सहायता मिलती है। यानी कि एक फसल की जगह दो तीन फसल लगाई जाती है तो इसे मिट्टी के कटाव को भी रोका जाता है और

भूमि में नमी संरक्षण भी बनी रहती है। कुछ अंतर्वर्ती फसल संयोजन से अनाज के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को हरा चारा भी उपलब्ध हो जाता है और इससे जो उन्हें जो है लागत में भी कमी आ जाती है। यानी किसानों को जो पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध हो जाता है तो इससे उन्हें अतिरिक्त जो लागत आती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अंतर खेती में सही फसल का चुनाव करें, पंक्ति अनुसार खेती करें, बुआई का समय, बीज की मात्रा और खाद एवं सिंचाई का भी पूरा जो है वो ध्यान दें कि समय पर होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई इन बातों का ख्याल रख के अपने खेतों में एक से अधिक फसलों को उगाते हैं या बुआई करते हैं तो इससे निश्चय ही उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को, और इसी लोकगीत के साथ अब समय हो चला है कि हम आपसे लिए इजाज़त। कार्यक्रम ग्रामीण जबा से नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम जननी। जननी का

उनकी शक्तियों की पूजा करते हैं और नारी शक्ति के महत्व से भी अवगत होते हैं। किस प्रकार से समय आने पर, जरूरत पड़ने पर नारी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, उजागर कर सकती है। लेकिन एक नारी तभी अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जब वो अपने अंदर छिपी शक्तियों के बारे में जानेगी, पहचानेगी तभी। वैसे तो हर नारी शक्तिमान है और ऊर्जाओं से भरी होती हैं, लेकिन ये शक्ति होती है अंदर से, यानी उसे महसूस करने की आवश्यकता पड़ती है और अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तभी समय पर वह अपने शक्ति का उजागर कर सकती हैं। लेकिन कुछ शक्ति होती है शारीरिक भी, यानी नारी जिसे प्राप्त करती है अपने खान पान द्वारा, अपने दिनचर्या में शामिल संतुलित आहार के द्वारा। लेकिन आज भी हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं, और यदि कुपोषण के शिकार हैं तो उसका असर तो पूरे घर गृहस्थी पर पड़ता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की आधारशिला होती है। महिला परिवार की देखभाल करती है, बच्चों का लालन पालन करती है, घर के कामकाज को संभालती है, और कई बार तो महिलाएं खेती बाड़ी का भी काम संभालती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है सभी क्षेत्रों में। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए अक्सर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के पीछे उनका ध्यान नहीं जाता है, बस वे अपने परिवार के सभी सदस्यों के उनका ही ख्याल रखती है। उनके भोजन हो गए, उनके आराम, उनके जो भी ज़रूरतें हो गई, उनका सारा ध्यान उन्हीं पे होता है और अपने सेहत को वे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती हैं, और जिसका परिणाम होता है कि महिलाएं अक्सर जो है वो उनमें थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द जैसे शारीरिक परेशानियों के शिकार होती हैं। और बहुत सारी महिलाएं जो हैं इसे नज़रअंदाज करती रहती हैं और उन्हें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इन पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और जब यही छोटी छोटी बातें गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं तो फिर महिलाएं जो हैं वे बिल्कुल जो है अस्वस्थ हो जाती हैं, और यदि महिलाएं अस्वस्थ होती है तो उसका पूरा असर पूरा घर पर प्रभाव उसका पड़ता है। तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वे अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें, पौष्टिक भोजन लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। और बहनों, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि आप अपने भोजन में संतुलित आहार को शामिल करें, यानी पौष्टिक भोजन को शामिल करें। और पौष्टिक भोजन जो है उनमें होती हैं पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल सब्जियां, दालें, दूध या जो दूध के बने अन्य सामान जो कि पनीर हो गए या पनीर से बने और भी जो व्यंजन हो गए, वो सभी लाभकारी होते हैं। मोटे अनाज का भी सेवन करना चाहिए, साबुत अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, सोयाबीन जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्हें अपने भोजन में पत्तेदार फाइबर युक्त सब्जियां जो है उनका सेवन करना चाहिए, और मोटे अनाज का सेवन करना तो बहुत ही ज़रूरी है बहनों। और हम आदि हो चुके हैं, सिर्फ दो चार अनाजों के ऊपर निर्भर हो गए हैं, चावल, गेहूं इत्यादि इत्यादि, जो कि लगातार इनके प्रयोग से हमारे शरीर में कई प्रकार के इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, कई गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। तो इन सबों से हटकर आप मोटे अनाजों का भी सेवन करें, उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। साथ ही आप जो भी मौसमी पत्तेदार हरी साग सब्जियां हो

0: का सेवन नियमित रूप से करें। और अभी तो अब ठंड के मौसम आ रहे हैं और ठंड के मौसम में तो जो भी साग सब्जियां भरपूर मिलती है बाज़ारों में और वो भी काफ़ी सस्ती मिलती हैं। यदि हम साग की बात करें तो इस समय पूरे साग की क्वालिटी आती है बाज़ार में और इन सागों के नियमित सेवन द्वारा हम अपने शरीर को हिस्ट पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं। बहनों, अभी देखिए आंवला का भी सीजन आ गया है और यदि विटामिन सी की पूर्ति करनी हो तो आंवला का प्रयोग ज़रूर करें। आंवला जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, विटामिन सी का खजाना होता है और इसे भी आप इसका लाभ लें, अपने पूरे सीजन भर इसका प्रयोग करें तो पूरे वर्ष भर इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा आप समय समय पर अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर जांच करवाते रहें ताकि शरीर में खून की कमी नहीं होनी चाहिए। खून की कमी होने से एनीमिया हो सकती है और एनीमिया से थकान, कमजोरी, सांस लेने में सांस फूलना, चक्कर आना इत्यादि इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। तो आयरन की कमी होने पर हरी सब्जियों का प्रयोग करें, दाल प्रयोग करें, चना, आयरन युक्त खाद्य सामग्री का प्रयोग करें और इसके अलावा समय समय पर आप ज़रूर अपने शारीरिक जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार आप जांच करवाते रहें और जो भी आपके जो चिकित्सक बताएं दवा लिखे उसका आप नियमित रूप से प्रयोग करें। और यदि देखा जाए गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाओं के लिए तो और भी आवश्यक हो जाता है कि वह अपने खान पान का बेहतर समुचित ध्यान दें क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चों का पूरा पूरा जो उनका जो वृद्धि है, उनका बच्चों का विकास है, पूरी पूरी माता के खान पान पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी महिलाएं गर्भवती हों तो उन्हें विशेष खान पान के ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। आयरन कैल्शियम की भी उन्हें विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आयरन कैल्शियम की तो वे ज़रूरत पूरा कर सकती खान पान के द्वारा भी शामिल में जो करती हैं, उसके अलावा भी आवश्यकता पड़ने पर उनकी गोलियां भी ली जा सकती है। तो इस प्रकार से वे अपने भोजन में पौष्टिक आहार लें और यदि खून की कमी हो तो फिर उसकी पूर्ति करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो बच्चों पर इसका असर हो सकता है। इसके अलावा जो है हमारी जो बहनें हैं उन्हें नियमित रूप से व्यायाम करनी चाहिए, योग करनी चाहिए। इससे उनकी जो शारीरिक जो गतिविधि है वो बनी रहती है, शरीर हिस्ट पुष्ट बना रहता है और इतना ही नहीं यदि व्यायाम करती हैं या नियमित रूप से योग करती हैं तो निश्चय ही आगे उन्हें किसी भी प्रकार के बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है और जो भी बीमारी है वो नियंत्रण में रहता है। इसीलिए जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता है निरोगी रहने के लिए बहनों, उसी प्रकार से हमें व्यायाम की भी आवश्यकता पड़ती है और इसे आप अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें और अपने लिए वक्त निकालें। मात्र आधा घंटा या एक घंटे की जो है वो समय निकालें अपने लिए और इस समय आप नियमित रूप से व्यायाम करें, सैर करें या फिर योग करें। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और एक अच्छी जो आदत बन जाएगी तो फिर आप खुद इसके जो है दिनचर्या में आप खुद ब खुद इसका पालन करेंगी। तो बहनों, सेहत का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आप ही घर की धुरी होती हैं और आपके इर्द गिर्द आपके परिवार होते हैं। तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर आपके परिवार भी भरा पूरा खुशहाल होगा। तो चलिए बहनों, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता बालिका शिक्षा। वार्ताकार होंगी पूजा गुप्ता।
1: नमस्कार श्रोतागण, आज हम बात करेंगे बालिका शिक्षा जो सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के विषय की बुनियाद है, उस पर आज अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। और चूंकि मैं स्वयं एक लड़की हूँ इसलिए यह विषय मेरे लिए केवल

एक औपचारिक चर्चा नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव वाला विषय है। मेरी अपनी यात्रा में भी मैंने देखा है और यह महसूस किया है कि शिक्षा एक लड़की की जीवन को कैसे संवार सकती है, उसे आत्मनिर्भर बना सकती है और उसकी पहचान को आकार देती है। श्रोताओं, आपने सुना होगा, एक शिक्षित पुरुष एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, लेकिन एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित करती है और नई दिशा दे सकती है। तो सोचिए, अगर हर लड़की को शिक्षा मिले तो हमारा समाज कितना उज्जवल हो सकता है। शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जो किसी भी प्रकार के लिंग भेद से परे होना चाहिए। पुरुष और महिला समाज रूपी जीवन के दो आवश्यक पहिए हैं, जिनका समान रूप से सशक्त होना और शिक्षित होना किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। जब दोनों बराबरी से आगे बढ़ेंगे, तभी समाज संतुलित और सफल बन सकेगा। इसलिए उन्हें समान अवसरों की आवश्यकता है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने, निर्णय लेने और आत्मनिर्भर बनने की शक्ति भी देती है। बालिका शिक्षा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षित लड़की अधिक उत्पादक, सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली बनती है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे देश के कई हिस्सों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, वह भी इस आधुनिक और तकनीकी युग में। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में लड़कियां अब भी असमानता और भेदभाव का सामना कर रही हैं। शिक्षा, जो किसी भी लड़की के समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकास का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है, उसे ही उससे दूर कर दिया जाता है। आज भी अनेक परिवारों में बेटियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता और उन्हें अक्सर घर के कामकाज, बाल विवाह या भाई की पढ़ाई के लिए पीछे कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या केवल बेटा ही भविष्य है? क्या बेटी के सपनों की कोई कीमत नहीं है? अगर नहीं, तो फिर हमें यह स्वीकार करना होगा कि समाज की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब बेटियों को भी वह शिक्षा, वह अवसर और वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यदि हम सच्चे अर्थों में प्रगति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समाज की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को शिक्षित करना होगा और इसकी ठोस शुरुआत बालिका शिक्षा से ही संभव है। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं, तो उन्हें शिक्षा से वंचित रखना क्या पूरे देश की प्रगति को रोकना नहीं है? जब हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं देते, तो हम सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि पूरे समाज की क्षमता को सीमित कर देते हैं। साक्षरता दर केवल कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं इसका आंकड़ा नहीं है, यह एक देश की जागरूकता, उसकी संभावनाओं और उसके भविष्य की दिशा दर्शाता है। अगर हम आधी आबादी को ही निरक्षर रखेंगे, तो साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी, विकास की रफ्तार कैसे तेज होगी? एक शिक्षित महिला न केवल आत्मनिर्भर बनती है बल्कि अपने परिवार की आय में योगदान देती है, बेहतर निर्णय लेती है और अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। जब लड़कियों को शिक्षा मिलेगी, तो उन्हें बोझ नहीं भविष्य की शक्ति माना जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप गरीबी में भी कमी आएगी, शिशु मृत्यु दर घटेगी और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। इसलिए बालिका शिक्षा केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। श्रोताओं, लड़कियों की शिक्षा में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है गरीबी। भले ही आज शिक्षा के साधन पहले से अधिक सुलभ हो गए हों, लेकिन कई परिवारों में के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। स्कूल की यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, स्टेशनरी और आने जाने का खर्च, यह सब कुछ परिवारों के लिए एक बड़ा बोझ होता है, जो दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हालात में जब कोई माता पिता खुद भूखे पेट सोने को मजबूर हों, तो उनसे यह उम्मीद करना कि वे अपनी बेटी को स्कूल भेजें, कहीं ना कहीं एक कठोर मांग लगती है। लेकिन दोस्तों, यही वह चक्र है जिसे तोड़ना होगा और यह उसका एकमात्र रास्ता है, शिक्षा। इसके अलावा बाल विवाह भी बालिका शिक्षा में गिरावट का एक अहम कारण है। आज भी कई इलाकों में लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। शादी से पहले ही उन्हें स्कूल से निकाल लिया जाता है, यह सोचकर कि अब पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है।
समाज में आज

भी यह मानसिकता बनी हुई है कि लड़की का स्थान रसोई तक सीमित है और उसका काम सिर्फ घर संभालना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अगर एक लड़की पढ़ लिख जाए तो वह न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनती है बल्कि अपने पति का आर्थिक बोझ भी साझा करती है। इससे घर की आमदनी बढ़ती है, जीवन स्तर सुधरता है और गरीबी की जंजीरें टूटती हैं। सकारात्मक बात यह है कि सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रभावी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, माध्यमिक शिक्षा बालिका प्रोत्साहन योजना। ये योजनाएं इसी सोच की उपज है कि हर बेटी को जन्म से लेकर शिक्षा तक संपूर्ण संरक्षण और अवसर मिले। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने भी कई उपयोगी सुझाव दिए हैं, जैसे मौजूदा स्कूलों के ढांचे को बेहतर बनाना, लड़कों के स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग सेक्शन की व्यवस्था करना और शिक्षा को अधिक सुलभ व आकर्षक बनाना। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्कूलों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य जांच और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि गरीब परिवारों की बेटियां भी स्कूल तक पहुंच सके। सरकार न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है बल्कि उन सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए सक्रिय है जो बालिकाओं के विकास में बाधक बनती हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम इसी दिशा में एक अहम कदम है। यह कानून स्पष्ट रूप से बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए चाइल्डलाइन नामक 24/7 टोल फ्री आपातकालीन सेवा शुरू की है ताकि कोई भी बच्चा, विशेषकर बालिकाएं, संकट की स्थिति में तुरंत सहायता पा सके। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी इसी दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह आयोग बाल विवाह और बालिका शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, निगरानी और हस्तक्षेप जैसे कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य एक ही है कि कोई भी लड़की केवल इसलिए शिक्षा से वंचित ना रहे क्योंकि वह एक बेटी है। लेकिन दोस्तों, यह बदलाव केवल सरकार की योजनाओं से संभव नहीं होगा। यह जिम्मेदारी हम सबकी है, हमारी, आपकी, मेरी, पूरे समाज की है। हमें वह माहौल बनाना होगा जहां हर बेटी बिना किसी डर और भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। अगर हम वास्तव में बालिका शिक्षा को आंदोलन बनाना चाहते हैं तो आइए कुछ संकल्प लें। हमें हर गांव, हर मोहल्ले में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की स्कूल से वंचित ना रह जाए। हमें हर माता पिता को यह जागरूक करना होगा कि बेटी भी बेटा समान है, योग्य है, सक्षम और सपनों की हकदार है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालय, सैनिटरी सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी कुप्रथाओं के विरुद्ध हमें सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हमें इस सत्य को समझना होगा कि लड़कियों की शिक्षा सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि समाज के उज्जवल भविष्य की नींव है। एक शिक्षित लड़की सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बदलती, वह एक परिवार, एक पीढ़ी और अंततः पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। वह अपने बच्चों की पहली शिक्षिका बनती है, उन्हें संस्कार देती है, सोचने की आज़ादी देती है। लड़कियों को शिक्षित करना कोई बोझ नहीं है, यह सबसे मूल्यवान निवेश है जो आने वाले कल को सुरक्षित करता है। जैसे जैसे एक महिला आगे बढ़ती है, उसका परिवार, समाज और राष्ट्र भी साथ साथ प्रगति करता है। श्रोताओं, मैं आप सभी के सामने कुछ ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत अब करने जा रही हूँ जिन्होंने शिक्षा के बल पर अपने जीवन को नई दिशा दी और समाज के लिए मिसाल बन गए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। इन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर राजनीति में प्रवेश किया और पूरे विश्व को यह दिखा दिया कि एक महिला भी देश का नेतृत्व दृढ़ता और कुशलता से कर सकती है। वहीं दूसरी हैं कल्पना चावला। एक साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मुकाम

0: हासिल किया जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वे भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और आज लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणादायक है। डॉक्टर किरण बेदी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। उन्होंने न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अपने साहस और ईमानदारी से पहचान बनाई बल्कि पूरे देश की लड़कियों को यह विश्वास दिलाया कि वे किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकती हैं। और आज हम गर्व से देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी ने शिक्षा को अपना सहारा बनाया और समाज में नई ऊंचाइयां हासिल की। दोस्तों, इन सभी महिलाओं में एक बात समान थी, वह थी शिक्षा। इन्होंने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि देश की दिशा और सोच को भी बदल दिया। इनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर एक लड़की को शिक्षा मिल जाए तो वह सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की ताकत बन सकती है। इसलिए श्रोताओं, जब हम खुद को देश का भविष्य कहते हैं तो यह सिर्फ हमारी गर्व की बात नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हमें अपने आसपास के लोगों को यह समझाना होगा कि लड़कियों की शिक्षा सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आशा की किरण है। लोगों को याद दिलाइए कि इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जैसी महान महिलाएं भी एक समय पर साधारण लड़कियां थीं, लेकिन शिक्षा ने उन्हें असाधारण बना दिया। और कौन जानता है, शायद अगली इंदिरा, अगली कलाम, अगली शक्ति हम में से ही कोई हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम लड़कियों को सपने देखने दें और उन सपनों को साकार करने के लिए उन्हें शिक्षा के पंख दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहनों, अभी बहुत ही अच्छी जानकारी दे रही थी पूजा गुप्ता कि किस प्रकार से एक जो है बालिका शिक्षित होती है तो पूरे राष्ट्र के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। तो सचमुच में ज्ञान जो है वो लोगों के ज्ञान का द्वार खोलती है शिक्षा, और इसलिए जो है हर बहनों को चाहना चाहिए कि अपने जो भी घर की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें ज़रूर शिक्षित करें। और इसी के साथ बहनों, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम जननी से। तो बहनों, हमें दे इजाज़त और जाते जाते एक बार फिर से सभी बहनों को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल बस कुछ ही पलों में।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई,
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के राज्य केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 13,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, विकसित तमिलनाडु से विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। सरायकेला खरसावां में भाजपा का मिलन समारोह, आजसू पार्टी के हरेलाल महतो अपने समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह में पुलिस को बड़ी सफलता, 5 किलोग्राम का केन बम समेत कई सामान बरामद। चतरा से 4 लाख रुपए नकदी समेत 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। राज्य में 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना, कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका। सवेरे छाया रहेगा कुहासा। और हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की शानदार शुरुआत, पहले मुकाबले में गोवा को 4-1 से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि विकसित तमिलनाडु से ही विकसित भारत का संकल्प साकार होगा।
12: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
11: सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में आज भाजपा की ओर से मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेलाल महतो ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्री महतो समेत अन्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान श्री साहू ने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
13: नाम
11: राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच नगर निगम के सफाई कर्मियों और एमटीएस कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हटिया मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने 15 अक्टूबर को हड़ताल करने की घोषणा की है। यूनियन का दावा है कि हड़ताल में करीब 2000 सफाई कर्मी हिस्सा लेंगे।
7: हमारी साफ सुथरी मांग है, हमारी सारी मांगे लेबर लॉ के मुताबिक है और उसका दमन कर रहे हैं कि हम 15 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटेंगे, 11 बजे से ऑफिस को घेर लेंगे, चाहे डीसी आवे चाहे कोई, या हमको कहना है कि हम कुछ नहीं चाहिए, अगर कानून है तो लागू कर दीजिए।
11: गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र में पारसनाथ पर्वत की तराई में जिरवा बेड़ा जंगल से 5 किलोग्राम का केन बम, कोडेक वायर और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि नक्सली हिंसक घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक छिपा कर रखे थे। चतरा जिले के लवालौंग थाना क्षेत्र में पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2.5 किलोग्राम अफीम, 4 लाख रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले अटूट संकल्प के साथ जन सेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं खाद और यूरिया की उपलब्धता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत के किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार यूरिया पर भारी मात्रा में सब्सिडी दे रही है।
13: सेव वाटर, सेव एनर्जी, सेव फर्टिलाइजर, हमारे देश में किसानों के नाम यूरिया जाता है, लेकिन वो यूरिया 15%, 20%, 25% केमिकल की फैक्ट्रियों में चला जाता है। रॉ मटेरियल के रूप में यूरिया का 100% नीम कोटिंग करने का काम पूरा करते हैं और इसके कारण अब ये यूरिया

0: खेती के सिवाय किसी काम नहीं आ सकता और नीम कोटिंग होने के कारण उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए जमीन में 10% कम यूरिया उपयोग करते हुए भी उसको इसका लाभ मिलने वाला है।
1: गोड्डा जिले के किसानों का कहना है कि नीम युक्त यूरिया के इस्तेमाल से उनकी फसलें लहलहा रही हैं और उन्हें कीट पतंगों से भी निजात मिल रही है।
2: हम विजय कुमार पंडित है, मझड़िया से हैं, एक किसान हैं। यूरिया खाद अभी तो ठीक ही मिल रहा है और जब चाहे वैसे मिल ही रहा है। फसल तो अभी खेतों में लहलहा रही है, अभी बढ़िया है। प्रधानमंत्री को ये खाद की उपलब्ध के लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं।
3: गणेश प्रसाद महतो है, घर बिलारी है। तो यूरिया जो लगाते हैं ना, वो खेत को अच्छा रहने देता है, कीट वीट नहीं लगता है, तो अच्छे से अच्छे चीज का उपयोग हो।
1: कलश स्थापना के साथ ही आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है। पहले दिन श्रद्धालुओं ने देवी दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की। रांची के डोरंडा स्थित जैप वन में वर्ष 1880 से अनोखे तरीके से दुर्गा पूजा की जा रही है। यहां मां दुर्गा की प्रतिमा के बजाय कलश स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। पुजारी ने बताया कि जैप वन की दुर्गा पूजा सबसे अलग और अनोखी है।
4: यहाँ का परंपरा वही है, जैसे दैनिक पूजा जैसे होता है सबको ही का, उसी तरह दैनिक पूजा होता है। डेली भगवती चेंज होते हैं, उनकी पूजा अलग अलग होती है। सप्तमी में हम लोग फुलपाती होता है, फुलपाती में हम लोग नौ पेड़ों में पूजा करके हम लोग फुलपाती का लेके जाके वहाँ से कात्यायनी देवी को मना के लेके आते हैं। अष्टमी का बलि पूजा भी होता है। भाईरिंग का मान्यता ये है कि हम लोग जैसे विजय होके आए ना माँ, तो उसी में हम लोग खुशी से माँ का विजय के चलते हम लोग भाईरिंग करते हैं।
1: दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
5: 14 तारीख से जितने भी बड़े बड़े पंडाल हैं वहाँ के पट के खुलने की हमें सूचना है और इसके लेकर रांची जिला वासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ना तो यातायात में किसी प्रकार की समस्या हो, ना ही उन्हें मेला घूमने में किसी प्रकार की समस्या हो। इसके लिए रांची पुलिस लगातार प्रयासरत है। 5,000 से अधिक फोर्स वो आपकी सुरक्षा के लिए रांची जिला में तैनात रहेगी और महिला बल की भी इस बार हमने विशेष व्यवस्था की है ताकि पंडाल देखने जा रही जो महिलाएं हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
1: देश से मॉनसून की वापसी की रेखा अभी भी रांची समेत कुछ अन्य शहरों से होकर गुजर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य में 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की आशंका है। वहीं सवेरे कुहासा छाया रहेगा। 16 अक्टूबर से आसमान के मुख्यतः साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के झांसी में आयोजित इस प्रतियोगिता के अपने पहले मुकाबले में झारखंड ने गोवा को 4-1 गोल से पराजित किया। मैच में पिछड़ने के बाद झारखंड की टीम ने शानदार वापसी की और लगातार गोल दागकर जीत अपने नाम कर ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 13,000 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, विकसित तमिलनाडु से विकसित भारत का संकल्प होगा साकार। सरायकेला खरसावां में भाजपा का मिलन समारोह। आजसू पार्टी के हरेलाल महतो अपने समर्थकों के साथ थामा भाजपा का दामन। नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह में पुलिस को बड़ी सफलता। 5 किलोग्राम का केन बम समेत कई सामान बरामद। चतरा से 4 लाख रुपए नकदी समेत 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। राज्य में 13 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका। सवेरे छाया रहेगा कुहासा। और हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की शानदार शुरुआत। पहले मुकाबले में गोवा को 4-1 से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: टीकू जी, 100 ग्राम पेड़े देना।
7: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
6: अरे क्यों?
7: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
6: अरे भाई, आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
8: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
6: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट।

0: अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई, RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
2: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
3: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
2: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
3: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
11: शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है, इसे लेकर कोडरमा में भी वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बन चुका है। मां दुर्गा की आराधना को लेकर तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर पूजा कमेटियों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महासप्तमी के साथ दुर्गा पूजा मेला की शुरुआत हो जाएगी। दुर्गा पूजा मेला को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। कोडरमा SP कुमार शिवाशीष लगातार जिले के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर रहे हैं और पूजा कमेटियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक गाइडलाइंस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावे शहर में भीड़भाड़ की स्थिति को देखते हुए विधि व्यवस्था बनाए रखने और वाहनों की पार्किंग सुगम तरीके से करने को लेकर रणनीति बनाई गई है। SP कुमार शिवाशीष ने बताया कि
12: दुर्गा पूजा आगामी है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोग इसमें अभी जितने भी मेजर पंडाल हैं उनको हम लोग पर्सनली विजिट कर रहे हैं। इसमें MDPO साहब भी हमारे साथ हैं, थाना प्रभारी भी है और उनकी जो पूरी टीम है वो भी है। इसमें हम आयोजकों से मिल भी ले रहे हैं ताकि हम लोग ये सुनिश्चित कर पाए कि अगर हम पंडाल में कोई दिक्कत देखें, जैसे पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर रहे, पंडाल में हर जगह इंपॉर्टेंट एरियाज पे कैमराज रहे, यदि हो सके तो बड़ा पंडाल है तो कंट्रोल रूम रहे, कहीं मेला लग रहा है तो झूला की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बढ़िया से रहे, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम सबको दे देना चाह रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक की भी प्लानिंग कर ले रहे हैं और ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन ट्रैफिक के जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो भी हो जाए। और उस
11: कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए मुद्रा योजना वरदान साबित हो रहा है। झुमरी तिलैया के विश्वनाथ मोदी चौक पर फल की दुकान चलाने वाले अनूप कुमार ने बताया कि कोरोना काल में जब वह वापस घर लौटे थे तो उनके पास न तो कोई काम था और न ही वापस मुंबई जाकर काम करने की इच्छा। ऐसे में उन्होंने मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर फलों का व्यवसाय शुरू किया और आज ऋण में ली गई राशि वापस करने के बाद अपने परिवार के भरण पोषण के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा भी दे पा रहे हैं। अनूप ने मुद्रा योजना के लिए PM मोदी का आभार भी जताया।
13: मेरा नाम अनूप कुमार है, झुमरी तिला वासी है, फल का व्यवसाय करते हैं। कोरोना काल में हमारे बहुत क्षति हो गई थी, जिसमें तो वापस अपने लखनऊ शहर में मुंबई में काम करते थे, वापस आ गए तो बेरोजगार हो गए। हमें फिर साथी संगति से पता चला कि मुद्रा लोन मिल रहा है, हमने अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद हमें मुद्रा लोन 25,000 रुपये मिला, जिससे हम अपना फल का व्यवसाय शुरू किए। आज व्यवसाय करते हुए भी हम अपने बच्चे को पालन पोषण करते हुए, उसके बाद क्या जो लोन लिए थे, मुद्रा लोन मिला था, हम उसके वापस चुका दिए। हम यही चाहते हैं कि इससे कि हमारा और रोजगार बढ़े। हम यही कहेंगे कि मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जिससे कि मुद्रा लोन से जितने छोटे छोटे बेरोजगार थे आज उनके पास रोजगार का सूचित अपने पालन पोषण के लिए सक्षम है।
11: अनियमित बिजली आपूर्ति और अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नीरा यादव ने कहा कि राज्य में जब रघुवर दास की सरकार थी तो शहर से लेकर गांव तक नियमित 20 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में

0: ग्रामीण इलाके तो दूर, शहरी इलाकों में भी अनियमित विद्युत आपूर्ति से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि
1: 14 से 19 भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, उस समय लोग बता दे 22 घंटा से ज्यादा बिजली मिलती थी, और आज लोग हर दिन बिजली रानी नहीं है, बिजली रानी चली गई सुनकर के बोल रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे। इसलिए हमने कहा ये सरकार की गलत नीति और गलत मानसिकता के कारण आज ये परेशानी हमारे आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, वरना अगर कोई दिक्कत थी तो उस समय तो पावर सब स्टेशन भी निर्माण नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने 22 से 23 घंटा बिजली देने का काम किया था। सतगावा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, मरकच्चो में, डोमचाज में तो छोड़ दीजिए, कोडरमा झूमी के लिए तो जानते ही नहीं थे कि बिजली चली भी जाती है। इन्वर्टर बेचने वाले बोलते थे कि हम लोगों का इन्वर्टर नहीं बस बिक रहा है मैडम, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था है।
2: और
1: आज क्यों ऐसी परेशानी आ गई कि आज लोगों को 2 घंटा छोड़ दीजिए, उस दिन हमने फोन करके डाटा।
0: जिले के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ दिनों से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्र में भी कई बार डीवीसी के नाम पर तो कई बार मरम्मती के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
3: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल।
4: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:19 हो चुके हैं। आइए हम शामिल होते हैं गीत गजलों के कार्यक्रम में।

तुझको चाहत से ज्यादा, समझा है तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूँ, बस तुझे छूने को दिल करे।

अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म याराना के इस गाने को। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:06 और 58 सेकंड हो चले हैं। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

लैला मजनू शीरी फरहा ही रांझा

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहाद रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

सुन रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। इसी के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वरांजलि।

0: सारी जा...
1: और अब आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हम शामिल होंगे कुछ ही पलों में। आप सुनेंगे हिंदी समाचार 8:45 पर, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार और रात्रि 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार। 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से रजनीगंधा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और एक रंग रात्रि 10:30 पर एक ही फनकार। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। तो कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी समाचार के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित। अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित

0: भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा, हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
2: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ

0: भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
1: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
2: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
3: वी लिव्ड एज ए नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन। सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

0: देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अब शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN rights body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter Uday Veer Sidhu wins the gold in men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
2: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier, others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: Recalling his interactions with former Tamil Nadu chief ministers, the Prime Minister said that despite changes in governments, his commitment to the development of Tamil Nadu and the welfare of its people had remained unchanged. The Prime Minister cited Tamil Nadu's temples, scientific institutions and metro rail network as examples of how tradition

0: पुख्ता अज़्म के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नव आबादियाती जहनियत को खत्म करने के मकसद से किए गए इकदाम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: जदीद भारत की तारीखी बरतानवी इस्तेमार की दो सदियों से गहराई के साथ वाबस्ता है और आज़ादी के बाद भी कई दहाइयों तक इसके असरात बरकरार रहे। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत मुल्क को बरतानवी दौरे हुकूमत की यादों से बतदरीज दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले 25 बरसों के लिए 5 अजायम या पंच प्रण पेश किए। दूसरे अज़्म की वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों की जिंदगी के किसी भी शोबे में, हत्ता के जहन के गहरे गोशों और आदातो अतवार में भी गुलामी का जर्रा बराबर असर नहीं होना चाहिए।
2: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: मुल्क को नौ आबादियाती विरासत से आज़ाद कराने और एक मुनफरिद भारतीय शिनाख्त को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। नई दिल्ली में तारीखी राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने 2022 में किया था। इसी तरह मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अजीमुशान मुजस्मा इंडिया गेट के करीब नसब किया गया, जिसने वहाँ नसब शुदा शाह जॉर्ज पंजम के मुजस्मे की जगह ले ली। भारतीय बहरिया ने भी 2022 में अपना नया परचम अख्तियार किया, जिसमें पहले मौजूद सेंट जॉर्ज की सलीब को हटा दिया गया। हुकूमत ने माली साल 2017-18 से रेलवे बजट को मरकजी बजट में जम कर दिया। इस तरह 1924 से चली आ रही इस रिवायत का भी खात्मा हो गया। बीजेपी रहनुमा राम माधव ने कहा कि भारत की सकाफती और तहजीबी शनाख्त को बहाल करना खुद एतमादी और खुददारी की एक अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि नौ आबादियाती असरात से निजात दरअसल हकीकी हुब्बुल वतनी का अमल है, जो आज मुल्क में जारी है। हुकूमत ने बरतानवी दौरे हुकूमत में ममनू करार दिए गए अदब को दोबारा जिंदा करने की भी कोशिश की है। इस मकसद के तहत नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने तहरीक आज़ादी के दौरान ममनू करार दी गई नज़मों, तहरीरों और मतबूआत की एक फहरिस्त तैयार की है। इसके अलावा हुक्मरानी को आसान बनाने और फरसूदा कवानीन को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत हालिया बरसों में 1500 से ज़्यादा पुराने कवानीन मनसूख किए जा चुके हैं। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जम्हूरिया ने कहा कि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा लोगों को नज्म जब्त और अखलाक अख्तार अपनाने की तरगीब देती है। करगिल की जिला पुलिस ने लद्दाख पुलिस की मोटरसाइकिल रैली टीम को एक पुरवकार तकरीब में रवाना किया। ये टीम कौमी सतह पर राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए गुजरात के सफर पर है। रैली को रवाना करने की तकरीब जिला पुलिस लाइंस करगिल में मुनकिद हुई, जिसमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन यादव, पुलिस के आला अफसरान और लद्दाख पुलिस ने सीआरपीएफ के एहलकारों ने शिरकत की। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आने वाले सैलाब के बाद अब तक 80 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है, उसमें 9 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। नेपाल की कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतल्लिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से 82 अफराद को बचाया गया है। यह सैलाब आज सुबह सवेरे आया, जिसमें दर्जनों मकानात और पुल बह गए हैं, जबकि पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक चुमनूबरी म्यूनिसिपैलिटी के कई गांव में तकरीबन 3 दर्जन मकानात बह गए। कम से कम 45 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 27 मकानात को जुज़वी

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन है तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16

0: पता चलो।
1: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
2: उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
1: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?

0: सुबाला खुली जाए बंद अकल का ताला।
1: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
2: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4।
1: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
3: मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
1: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
3: विकी,
4: किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया है? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने, कुत्तों कमीनों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
1: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
5: तुम्हारा नाम शेर खान है?
6: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
5: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
6: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
4: नहीं साहब।
5: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
6: मतलब का बात बोलू साहब?
1: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
5: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
3: क्यों?
5: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
1: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
7: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
8: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
7: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
8: हार जाता है?
7: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
8: तो क्या जुआरी है?
7: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का

0: क्या दोष?
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी, आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी, आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए, वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
1: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
2: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें? आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद हैं।
3: आज खुश तो बहुत हो गए था। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
2: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
4: आइए आइए प्रेमल बाबू।
3: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
4: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
4: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
3: ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है, मैं कह रहा हूँ, कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम।
4: क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? सीधी तरह बात करना।
3: सीधी तरह कहां से करूं, और तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। और परिमल शादी शुदा है वसुधा के लिए, हूं ना?
4: होना नहीं है ना।
3: हाँ है ना। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार के दिल की बात कहना चाहता हूँ, तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख शादीशुदा है,
4: कंबख क्या?
3: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
4: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
3: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
4: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
2: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
5: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ron Babasate.
6: My name is Anthony Gonzalez.
7: What's that? Is this
6: right? My name is Anthony Gonzalez. मैं दुनिया में अकेला हूँ।
2: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
8: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
9: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
8: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे।
9: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
8: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
9: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम सर।
2: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
10: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पे हाथ रखा। मैं रो पड़ा, उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने अगर आप चाहते।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुला लो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने

0: बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
1: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
0: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया। ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना, उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
1: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
0: अच्छा क्या, ठीक है बक बक नहीं करता है।
1: कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
0: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट फेयर जाना है।
1: अच्छा वहाँ रहते हो?
0: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
1: इंतजार? हाँ। कौन करता है?
0: अपना महबूब।
1: महबूब?
0: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेंगे ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
1: बस बस बस।
0: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
2: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
3: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसी चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है।
4: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
2: साल 1984 अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका फिल्म तरावी।
5: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
6: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
5: ओ, ओ, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
7: सरकार मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
5: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
7: ये तो आपका बड़प्पन है।
5: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफर चट।
7: बात कहनी थी मालिक।
5: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है?
7: सरकार अगले महीने मेरी बेटी की शादी है।
5: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
8: नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना?
7: नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं, जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
5: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
6: 2.5 लाख रुपया?
5: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी पांच बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं, कल का क्या भरोसा। नथुलाल जी मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। क्यों, चलो बट ठीक है हमने
2: हमारे लिए

0: ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें,
1: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं, कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
0: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
2: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश।
0: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
3: ए पीकू, अरे फ्लाश में पानी नहीं है।
4: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
3: आई नो माई सिस्टम बेटर ऑन यू।
5: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
6: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
7: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
0: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
8: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर and these boys must realize no का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो।
0: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
9: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
7: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
9: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है, इसका फैसला अदालत में होगा।
7: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
9: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
7: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
9: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
7: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
9: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
10: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाएं, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया

0: इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज़ के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
1: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण से आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। फिर 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम रजनीगंधा।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम में गीता दत्त के गाए गानों को लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा के साथ।

अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घर में रात्रि के 10:29 हो चुके हैं। रात्रि 10:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे एक रंग एक ही फनकार।

आप सुन रहे हैं एक रंग एक ही फनकार। अभी आपने सुना फिल्म जुनून के गाने को। एस पी बालासुब्रमण्यम अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, नदीम श्रवण के संगीत और समीर के बोल।

पौड़वाल और कुमार शानू की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं की इस गाने को, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत। आप सुन रहे एक ही फनकार एक रंग कार्यक्रम।

सड़क फिल के गाने को सुना कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, समीर के बोल नदीम श्रवण के संगीत और इसी और अब आइए सुनते दिल है कि मानता नहीं कि इस गाने को। इस गाने के साथ ही आज के फिल्मी सफ़र एक रंग से आज के फनकार इस से प्रोग्राम से हम लेते हैं आपसे इजाज़त। आप रात्रि 11 बजे सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: बस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद 11 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।